0: और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 टू 13 कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को कॉल 972-666-1181 मेंशन फन एशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज लव्ड बाय डैलस
2: तुमने फिर कार्ड यूज किया
3: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
2: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
0: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
4: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Funasia Radio.
5: Hello, hello, my beautiful people and my lovelies. How are you all doing today? मैं कौन हूँ आपको पता ही है यार मैं कौन हूँ मैं पिछले चार दिन से इसी टाइम पे आ रही हूँ अभी भी अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं देन यू आर नॉट ए डेडिकेटेड फैन ऑफ फन एशिया दैट्स राइट कोई बात नहीं अभी तक नहीं बने थे तो अभी बन जाओ बिकॉज दिस इज एपी द हिपी एंड आई एम ब्रिंगिंग टू यू एन इवनिंग इन डैलस दैट इज करेक्ट Every Monday to Thursday, 7 to 10 p.m. We're going to have lots of fun kyunki main aa gayi hoon. I'm the newest baddie here at Fun Asia Radio 104.9 FM. And we're going to play some amazing music. जो पुराने गाने हैं जो आपने सुने हैं लेकिन भूल जाते हैं कई बार आजकल सुनने को नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिल को छू गए थे एंड यू नो ऑल ऑफ दैट एंड देन वी आर आल्सो गोना लिसन टू सम न्यू सॉन्ग्स जो शायद आपने सुने हैं शायद नहीं सुने और नहीं सुने हैं तो दोबारा सुन लो यार उसमें क्या फ़र्क पड़ता है नए गाने सुनना बहुत ज़रूरी होता है ना And we are going to explore some juicy, juicy stories. Yes, that's right, friends. We are going to explore. So don't be a bore. Please call me and share me your juicy, juicy stories. Because you know what we're going to share today? I have split my entire show. Matlab 3 ghante 7 se 10. Aaj main ekdam soch samajh ke aayi hu. Theek hai? Ekdam plan shan karke ekdam bilkul vibes, okay? तो आज मैं सोच के ये आई हूँ कि हम 7 to 8:30 तक हम एक्सप्लोर करेंगे सम चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट व्हिच मींस यू नो आई वाज थिंकिंग कि व्हाई डोंट यू गाइस कॉल मी अप एंड टेल मी सम ऑफ योर मोस्ट एम्बैरसिंग एलिमेंट्री स्कूल स्टोरीज दैट यू हैव डन विच नाउ हैज बिकम अ कोर मेमोरी आई फील लाइक हमारे सबकी जिंदगी में ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें तो होती है जो हमने एलिमेंट्री स्कूल में 10 साल पहले के यू नो व्हेन वी वर बिफोर द एज ऑफ 10 आई थिंक 10 साल के बाद हमारी थोड़ी कॉग्निटिव एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है आई फील लाइक वो सेल्फ कॉन्शियस वाली वाइब आ जाती है लेकिन उसके पहले तो हम कुछ भी बहुत कुछ करते हैं बिना सोचे समझे एंड इट्स प्रीटी अनहिंज्ड आई एक्चुअली बिसाइड्स वर्किंग फॉर फनीशा आई ऑल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आई टीच music and piano and guitar and everything so I work basically with kids all day long aur pichle pata nahi kitne 4-5 saalon se main yahi kar rahi hu to har bari main kisi student ko padhane jaati hu ya kuch bhi hota hai koi bhi kuch na kuch mazedar cheez hoti hai and they say stuff that is wild and or they do stuff that is wild there was a time one of my students She tried to teach me a dance move in the middle of her living room. And I'm uske parents ke samne mein baith ke main uske sath dance move kar rahi hu because you know nahi to wo nahi apna homework nahi karegi aur wo class nahi karegi. She's like, "No, I don't want to do my class agar aap mera dance move nahi karoge." I was like, "Acha yaar, chalo, let's get this going, you know? What all the things we do for our jobs, right? The things we do for our jobs." Anyways, so we are going to talk about all of those unhinged embarrassing things that you did as a kid and you guys call me up You can call me, you know, Fun Asia ka number, 972-235-5555. Abhi pehle ek gana sunte hain, theek hai? Uske gana sunne ke baad aap mujhe aake call kariye aur call karke boliye ki aisi kya cheez hai jo aapki core memory ban chuki hai. Mere paas to kaafi interesting stories hain. Maine bahut harkatein kari hui as a child. To ab aapki baari. मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी. उसके अलावा आई हैव दिस रेडिट थ्रेड वेयर पीपल शेयर देयर स्टोरीज, बट मे बी उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. लेकिन आप आइए एंड देन लेट्स डू अ लिटिल शेयर, यू नो, वी आर डूइंग अ लिटिल हार्ट टू हार्ट सेशन. एनीवेज, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड कम बैक एंड शेयर.

0: ऑल राइट गाइज, आई लव दैट सॉन्ग. मतलब कितने साल हो गए अच्छे से लक्की अली के गाने नहीं सुने हमने. एंड ही वॉज सच एन आइकॉनिक आर्टिस्ट. इनफैक्ट वो अभी कुछ दिनों पहले भी आए थे, आई थिंक डैलस या ह्यूस्टन में कहीं पे तो आए थे. ही डिड अ कॉन्सर्ट एंड आई हर्ड दैट इट वॉज प्रीटी सोल्ड आउट. इवन नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, 30 सालों के बाद भी, यू नो, हिज म्यूजिक स्टिल टचेज ऑल ऑफ आर हार्ट्स, राइट? एनी वेज, गोइंग बैक टू वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, विच इज दिस, कि यार वॉट इज दैट वन रियली अनहिंज थिंग दैट यू गाइज डिड एज एन एलिमेंट्री स्कूल किड, यू नो, एंड आई एम टॉकिंग लाइक यू हैव टू बी अंडर द एज ऑफ 10, ठीक है? बिकॉज उसके बाद हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी थोड़ी डिवेलप हो जाती है, एंड सो वी डोंट वॉन्ट गो ओवर देयर. सो वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू रिमेंबर दैट बिकेम अ कोर मेमोरी दैट यू, एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या अलग चीजें हैं. ओके, मेरे लिए तो ये सबसे, मेरी एलिमेंट्री स्कूल का सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट था. एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं, ये एम्बैरसिंग मोमेंट था, बाकी कुछ अच्छी मेमोरीज बन गई. ओके, आई विल टेल यू. आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट ग्रेड, आई वॉज बेली लाइक 6 ईयर्स ओल्ड और समथिंग, ठीक है? और हम लोग ना एक रस्किन बॉन्ड की कोई स्टोरी पढ़ रहे थे. उसमें देर वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल अ बैनियन ट्री, ठीक है? बैनियन ट्री हम सबको पता होता है, पीपल का पेड़, ठीक है? उसमें से वो रूट्स गिर रही होती हैं, जायंट बड़ा सा पेड़ है. मतलब इंडियन इंडियन स्टोरीज में वो ये भी बताते हैं कि चुड़ैल बैठती है उसके ऊपर. मतलब आई डोंट नो, आपने सुनी कि नहीं वैसी वाली स्टोरी? मैंने तो बड़ी सुनी है. मेरी मम्मी कहती थी, अरे उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहाँ पे चुड़ैल है, वहाँ पे भूत है. तो आई केम अक्रॉस दिस वर्ड बैनियन ट्री, एंड रस्किन बॉन्ड की स्टोरी थी. रस्किन बॉन्ड इज अ रियली प्रोलिफिक राइटर हु वुड राइट ऑल दीज लाइक किड स्टोरीज एंड स्टफ. तो मेरी टीचर ना बड़ी चंट थी. मतलब शी वॉज सो क्लेवर, शी थॉट शी कैन लाइक जस्ट, यू नो, फूल अ लिटिल किड्स. बाय द वे गाइज, इफ यू आर अ टीचर, प्लीज डोंट एम्बेरस योर चिल्ड्रन, यू नो, आई मीन इट बिकम्स लाइक एन एम्बेरसिंग कोर मेमोरी इनके दिमाग में, वो उसके बाद सोचते रहते हैं. मतलब यू नो, इट बिकम्स लाइक अ फॉर एवर थिंग. सो एनी वेज, सो दिस टीचर रोट द वर्ड बैनियन ट्री ऑन द बोर्ड, एंड देन शी ड्रू द बैनियन ट्री ऑल्सो, ठीक है? एक ऐसी सी रफ सी ड्रॉइंग बना दी, एंड देन शी डिडंट टेल अस वॉट द वर्ड एक्चुअली साउंडेड लाइक. नो, मैडम डिड नॉट टेल अस दैट बैनियन ट्री इज सपोज टू साउंड लाइक बैनियन ट्री. अब 6 साल के बच्चे हैं, पहली बात तो इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, ओके? मेरे घर पे बोलते थे बंगाली, मेरे दोस्त लोग बोलते थे हिंदी, बिकॉज आई ग्रू अप इन डेली. तो इंग्लिश जो हम सीखते थे, वट एवर वी लर्न, इट वॉज ओनली इन स्कूल, राइट? और आई मीन ऑफकोर्स यू गेट बेटर वंस यू ग्रो अप एंड यू स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ दीज हॉलीवुड मूवीज एंड स्टफ. इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज, इट्स नॉट अ मेन लैंग्वेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट सिटी यू आर इन फ्रॉम इंडिया. इट्स प्रीटी मच द सेम स्टोरी एवरीवेयर, अनलेस योर पेरेंट्स ऑल्सो कम्युनिकेट घर पे ओनली इन इंग्लिश एंड ऑल दैट, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इट्स अ लिटिल बिट बेटर, राइट? सो दिस लेडी, आर टीचर, मिस, आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, आई थिंक मिस डॉली था उनका नाम, डॉली मैम, ठीक है? डॉली मैम ने एकदम बोर्ड पर ड्रॉ किया और वर्ड लिखा बैनियन ट्री ऐसे करके, और बोला, क्वेश्चन सबको पूछा क्लास में, अच्छा हु कैन टेल मी देन व्हाट इज दिस वर्ड, हु कैन से व्हाट द वर्ड साउंड्स लाइक. मतलब हमने जिंदगी में वैसी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है? ऊपर से तुमने ये वर्ड लिख दिया है और ऐसी स्पेलिंग तो मैंने कुछ और की सुनी हुई है, यू नो. तो मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, यू नो, दिस इज मी यार, इपी द हिपी, ऑफ कोर्स यू नो, मतलब आई एम ओवर, आई मीन मेरे दिमाग, मेरे मेरे दिल के अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस बचपन से ही भरा हुआ है, ठीक है? तो मैंने बोला कि अब मैं अपना हाथ खड़ा करूंगी एंड आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. उस मेमोरी के बाद ना मैंने हाथ अपना खड़ा करना बंद कर दिया. मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर रही. तो मैंने हाथ खड़ा किया अपना, मैंने बोला डॉली मैम आई नो द आंसर टू दिस, आई नो, प्लीज प्लीज इधर इधर. तो डॉली मैम कहती, अच्छा आओ खड़े हो, क्या तुमने बोला है, मतलब व्हाट इज द वर्ड कॉल्ड? मैंने कहा दिस वर्ड इज कॉल्ड बनियान ट्री. एंड शी बर्स्ट आउट लाफिंग ऑन माई फेस, ओके? और जैसे ही वो हंसी तो सारे बच्चे भी हंस गए, यू नो. एंड इट वॉज लाइक सो एम्बेरसिंग कि पूरी क्लास आप एक साथ खड़े होके, एक साथ मतलब एकजुट होके 45 बच्चे. मैं आई वेंट टू द स्कूल कॉल्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल. तो दिल्ली पब्लिक स्कूल वैसे ही इतनी इनरोलमेंट थी, एक क्लास में 45 बच्चे होते थे, सब मिलके हंस रहे हैं और मैं वहां पे खड़ी हूँ कि मैंने यार बोला क्या, ये तो बनियान की स्पेलिंग है, रूपा बनियान तो ऐसे ही लिखते हैं जो टीवी पे ऐड आते हैं, बनियान तो ये तो बनियान ट्री ही है। तो कह रही नहीं, इट इज द बनियान ट्री, इट इज नॉट द बनियान ट्री। तो मैंने कहा ओके फाइन। उसके बाद से यार मैंने जिंदगी में कभी हाथ उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्लास में तो मैं नहीं उठाऊंगी, फिर कोई हंस देगा। बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइज, अगर आप टीचर हैं या पेरेंट हैं और यू आर एन ओल्डर पर्सन और एक बच्चा कोशिश कर रहा है, उसके मुंह पे मत हंसो। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, 10 साल की उम्र उम्र के नीचे जो बच्चे होते हैं, दे आर सो सेंसिटिव, उनके दिल इतने नरम होते हैं, एंड यू नो देयर ईगोज आर ऑल्सो लाइक सुपर सुपर सुपर सेंसिटिव। तो अगर उसमें आप उनके ऊपर मुंह पे हंस दोगे, एंड इट्स क्वाइट एन एम्बेरसिंग सिचुएशन, उसके बाद उनका पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो आई मीन नाउ इन हाइंड साइड इट्स वेरी फनी टू मी, बिकॉज सम हाउ आई वॉज एबल टू फाइंड माई कॉन्फिडेंस बैक अगेन। बट इन इन रियालिटी इन लाइफ डोंट रियली डू समथिंग लाइक दैट टू योर ओन किड्स और योर पड़ोसी किड्स और टू योर स्टूडेंट्स। डू नॉट लाफ एट देयर फेस और समथिंग, लेट देम डू देयर ओन थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बींग अ चाइल्ड। एनी वेज, दैट वॉज माई एम्बेरसिंग स्टोरी। लिसन टू द सॉन्ग एंड देन आई विल शेयर सम ऑफ द अदर अनहिंज्ड एम्बेरसिंग स्टोरीज दैट आई फाउंड ऑन रेडिट दैट पीपल एक्चुअली पोस्टेड, यू नो, एज एलिमेंट्री स्कूल किड्स। I would love to hear from you guys as well. Is there anything that you remember? We can put you on air, or we can not put you on air also, but you don't have to tell me your name. You just come on air, explain your story, and that's about it. And uske aage hum kuch nahi puchenge. My number is 972-235-5555. Enjoy this beautiful song. This girl is doing a lot of amazing music in India right now. Oh, we have a call coming. Actually, गाना बजाने से पहले maybe I'll answer that call. कट गया call. If you were trying to call me, I just saw your call. If you were trying to call me back. We can pause the song and we can, you know, take your call. Okay? Oh, there we go. Hi, you're on air. Thank you for calling.
1: Hello?
0: Hi, can you hear me?
1: Yes, I can hear you. I can't stop laughing by your
0: banyan tree story. Isn't it hilarious?
1: I'm driving and I was just listening to it and I said, okay, what did you say? The moment you said banyan tree,
0: banyan tree.
1: These kids were laughing, I will be laughing with them. This is so funny. I was like, how long it took you to get over this?
0: Listen, the fact that I'm almost in my mid-30s, I'm in my mid-30s and I still remember this memory from when I was 6 years old. So I don't think I've gotten over it. I will remember it even when I'm 75. So it's one of those core memories, you know, ki zindagi mein kabhi baniyan, bina research karke koi word bolna hi nahi, hai na?
1: Now I can tell everybody I know banyan tree.
0: You know banyan tree?
1: I'm not going to say banyan tree anymore. I'm going to tell everybody banyan tree. Have you seen the banyan tree?
0: And yes, if you are an artist, if there is an artist who is listening on the radio, somebody make a tree with banyans hanging from it. Instead of arm, we'll call it banyan tree. Oh my goodness.
1: I was just listening to your story with so much concentration. The moment you said banyan tree, I started laughing. I was like, I need to call her and tell her from now on, anybody asks you a banyan tree, I'm just going to say banyan tree.
0: बनियान ट्री यार, बनियान ट्री भाई, दिस इज पॉप आर्ट। ओके, आई एम गिविंग यू पॉप आर्ट आइडियाज। आर देर एनी पेंटर्स और आर्टिस्ट आउट देर? यू गाइज नीड टू कॉपी दिस आइडिया, पुट इट डाउन ऑन पेपर एंड यू कैन सेल दिस पेंटिंग फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। बट डोंट फॉरगेट टू क्रेडिट मी, आइडिया मेरा ही था, बनियान ट्री वॉज ओरिजिनली माइन। ओके, do you have a story to share that you want to share with us?
1: I have no, I don't have any. No, I don't have any stories. I just want to call and say, you know, it's a very funny story that you told me. I mean, it's a real story, but it was really, really funny.
0: I know,
1: really
0: like
1: it.
0: Well, what can I say? I have a knack for making a fool out of myself in public, and I've been doing this since I was a child, and now I do it on the air. Well, thank you for calling and letting me know.
1: Thank you.
0: Thank you for my call. Yeah. All right, guys. Well, enjoy the song and laugh at the banyan tree jokes. And when we come back, then we'll crack some more jokes, okay?

0: Hello. Hello.
1: हाय, कैन यू हियर मी?
0: आप सुन पाए हो?
1: सॉरी, मैं थोड़ा माइक ऑन करना भूल गई. कोई बात नहीं, मैं इतनी खुश हो
0: हाँ
1: गई कि
0: तो
1: कॉल आ
0: ठीक
1: गया.
0: है,
1: कोई,
0: लेकिन मेरे को एयर पे मत रखो ना।
1: अच्छा, एयर पे नहीं रखे. कोई बात नहीं, मैं आपको एयर से हटा रही हूँ. हम गाना बजा रहे हैं. हम आप मैं अलग से बात करते हैं. हाउ अबाउट दैट?
0: ओके।

OMG guys, my studio is flooding with calls. Thank you so much for sharing your stories and your comments and everything. अभी हम थोड़ी मतलब दो मिनट में हम ब्रेक में जाएंगे, इसीलिए मैंने गाना काट दिया. लेकिन जो मेरे पास मतलब everyone is actually relating to this बचपन की embarrassing stories और हम अब हंस रहे हैं उस पर, पर उस टाइम पे तो बड़ा दुख होता था, है ना. तो वन ऑफ द स्टोरीज, आई डिडंट टेक द पर्सन नेम बिकॉज आई मीन सब अपना नाम नहीं बताना चाहते, एंड दैट्स टोटली फाइन. बट ही सेड वील कॉल हिम मिस्टर एक्स, ठीक है. मिस्टर एक्स ही वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और वो ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, एक छोटे से शहर में थे इंडिया में. और उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो ना आर्मी कैंट में होता था, तो मे बी आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह उस टाइप का कोई स्कूल था, ठीक है. और वहाँ पे बहुत टाइप के लाइक बच्चे आते थे, मतलब विलेज के बच्चे या स्मॉल टाउन के बच्चे भी आते थे और जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे वो भी आते थे. ओके, सो इट वाज अ प्रीटी मिक्स्ड एनवायरनमेंट. तो उसमें वहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले ना इतनी ग्रामेटिकल एरर्स होती थी उनकी, क्योंकि उनकी भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, है ना. आई मीन उनकी भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज ही थी, तो इसीलिए भाई थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू इन लाइफ, राइट. तो लोग उनकी ग्रामेटिकल एरर्स इतनी होती थी कि लोग उन पे भी हंसने

0: लग जाते थे और कहते थे अरे बड़े क्या, मैं उनका वर्ड चुरा रही हूँ यहाँ पे, डेढ़ शाने बनते थे बाकी सारे बच्चे। भाई आप ये सारी चीजें भूल जाओ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, यही चीजें हमें बाद में फ्यूचर में याद रहती हैं और हम उस चीज को दोबारा नहीं रिपीट करते। जैसे मुझे तो जिंदगी में, मैं कभी बनियान ट्री नहीं बोलूंगी, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर बैनियन ट्री फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके सो एनी वेज, आई थॉट दैट वॉज अ प्रीटी फनी स्टोरी। यू गाइज कॉल मी एंड टेल मी योर फनी स्टोरीज दैट यू हैव डन एज अ चाइल्ड विच इज कम्प्लीटली अनहिंज्ड। एनी वेज, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाई ड्रीम होम मॉर्गेज। योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन यू थिंक। दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न इट इन टू रियालिटी एंड वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक, देन आई विल कम बैक एंड फिनिश दिस। ओके एंड
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता है?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
7: चिकन बनाना
8: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
5: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
11: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
5: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
11: सच में बिल्कुल घर जैसा।
5: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
12: इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट, रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट 3 टिप्स। First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.

कहते हैं मुझको इपी द हिपी, क्योंकि मेरा नाम है इपी द हिपी एंड नॉट मिस हवा हवाई. वैसे मेरी बातें थोड़ी सी हवा हवाई टाइप ही हो गई है, थोड़ी ऐसी यू नो बनियान ट्री एंड ऑल, व्हाट कैन आई से. एनीवेज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. They are licensed in all 50 states. Exactly. Their experienced team is committed to finding the right loan options which are exactly customized to your needs. So, agar aap apna pehla ghar khareed rahe hain ya upgrade kar rahe hain or you're looking to refinance, you start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. That's right, guys. Dream Home Mortgage. They make your dream home into a reality. Anyways, while you guys were on a break and we were listening to that previous song, I have to tell you, I got this really funny call. Theek hai. We are not going to name who it is because sometimes you have to respect privacy also. We'll call her Miss Gulati. ठीक है, Miss Gulati जी ने हमें call करके अपनी embarrassing story बताई. जब वो छोटे थे, she and her brother. तो you know, हाँ, हम जब छोटे होते हैं घर पे कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं, बेटा एक गाना आगे सुना दो, बेटा थोड़ा सा डांस कर दो, बेटा ये दिखाओ तुमने ये क्या बनाया स्कूल में. मतलब यू नो इट्स अ शो, राइट? बिकॉज वी आर अ बिगेस्ट ट्रॉफीज अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स. तो मैंने भी बहुत किया हुआ है. मैं तो गाना वाना सीखती थी, कोई भी आता था मेरे घर पे, चाहे उसको गाना सुनना हो या ना हो, मेरे पेरेंट्स बोलते थे बेटा गाना गा के सुनाओ, वो वाला जो गाना तुमने गाया है ना आज श्याम मोहर लियो. और मैं क्लासिकल सीखती थी और वो मेरे वो फादर का वो फेवरेट गाना था. वो मुझे हमेशा वो कहते थे कि वो वाला गाना सुनाओ, वो आज श्याम मोह लियो बांसुरी बजाएगा. मैंने और मैं इतना परेशान हो गई थी ना उस गाने से, हर बार वही गाना होता था. एनीवेज, रुचि जी की स्टोरी पे जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उनके घर पे कोई गेस्ट आए थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आप थोड़ा सा डांस करके दिखा दो, ठीक है, पेरेंट्स के मतलब गेस्ट के सामने. तो वो और उनके भाई, उन्होंने डिसाइड किया चलो भाई हम डांस करके दिखाते हैं ऐसे करके. ठीक है, तो उन्होंने गाना गाना शुरू किया. आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ डांस परफॉर्मेंस यू गाइस, इट वॉज अकंपनीड विद सिंगिंग ऑल्सो. तो कौन सा गाना गाया उन्होंने? उन्होंने गाया ये गाना, ये मतलब यू नो बचपन में हम जब छोटे होते थे ना, सो वी लव्ड, मतलब कमर्शियल्स इतने कैची होते थे, सारे कमर्शियल्स के जो एड जो गाने होते थे ना वो इतने सही होते थे, जैसे झंडू बाम झंडू बाम पीड़ा हाड़ी बाम सर्दी सर्द दूर करे पल में दूर करे झंडू बाम ऐसे बहुत सारे होते थे. हाँ ये तेरी स्किन पे क्या हुआ अब कहो आई डोंट केयर ऐसे बहुत सारे ऐड होते थे. मुझे तो सारे के सारे याद है आई थिंक ऑलमोस्ट, बट ये वाला मुझे नहीं याद. ये उन्होंने बताया तो उन्होंने एक ऐड गाना शुरू किया, ठीक है, और उसी ऐड पे वो और उनके भाई ने डांस करना शुरू किया. और ऐड क्या था कि बोल भाई बोल क्या राज है तेरा, और कहती है मलाडी माल एंड आई वाज लाइक ये मलाडी माल है क्या चीज, मुझे तो याद नहीं. कहता है इट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव. तो उसके बाद उनको उनके भाई को इतनी मार पड़ी ना मम्मी से, कहते कैसे कैसे गाने सीख के आते हो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के गाने के ऊपर कोई डांस करता है गेस्ट के सामने. ओ जी इट वाज सो फनी. मैंने कहा ओ गॉड, ऐसी स्टोरी तो मतलब क्लासिक है, ये तो बोलनी पड़ेगी. Anyways, that being said, I hope you enjoyed that lovely story. अगर आपके पास भी कोई ऐसी मज़ेदार entertaining story है, please call me up. Let's share some really juicy, fun stories which you may or may not share with everyone. So, but let's do that, okay? I will tell you some things from the Reddit thread that I found out recently. उसके बाद हम एक और गाना सुनेंगे, ठीक है? तो this thread said, tell me the most embarrassing thing that you did as an elementary school kid. So this girl writes, in 7th grade, theek hai, 7th grade mane she is barely like 12 years old or something, I think, yeah, so right, huh, so she's a child, she's not even a teenager you guys, she's a tweenager. So in 7th grade she acted to get some boy's attention, you know,
वी ऑल डू दैट, आई मीन ऑल द लेडीज डू इट, गाइज ऑल्सो डू इट, आई मीन दोनों तरफ से करते हैं. एंड देन शी टोल्ड हिम जस्ट सो उसका अटेंशन उसको मिल जाए उस बंदे का. ओह माय गॉड दिस इज सो फनी, मैं खुद ही हंस रही हूँ, मैंने बोला भी नहीं, उसको हंसी आ गई. सो शी वेंट एंड शी टोल्ड हिम दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन. I mean, like a 12-year-old probably doesn't know what postpartum depression means, but also, it is so funny. Have you done anything, something stupid as that? Please come and share. There is no filter over here, guys. This is unhinged. It's a safe space. Come on. So, usi se related, main aapke liye gaana bajati hu. This is Kailash Kher with Toba Toba. Hai Toba, kya bol diya tumne?

0: राइट, तौबा तौबा, हमने कैसी हरकतें करी है बचपन में वो हमें ही पता है. ऑल राइट गाइज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. अगर आप किसी गाड़ी या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं और कुछ ऐसे हो चुका है, आज तो मेरा दो बार एक्सीडेंट होने से बचा, थैंक गॉड. ओ माय, ओएमजी, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, पता नहीं क्या था. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. मे बी द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज बैक, आई डोंट नो. ओके, देन अटर्नी उमर ख्वाजा will fight your case. If you ever get stuck in a situation like that, he will come and fight your case and help you get the compensation that you totally deserve. मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील वील करना इज वेरी स्ट्रेसफुल, सो यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक यू मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड कॉम्पेंसेटेड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, मतलब बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, बात करने के लिए पैसे नहीं लगते. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com. यस यू गाइज, आई एम स्टिल टेकिंग कॉल्स. मेरे को कॉल करके अपनी फनी स्टोरीज बोलो यार, बच्चों वाली, यू नो, बचपन में क्या करी थी. मेरे पास इतनी सारी रेडिट थ्रेड्स है, मुझे सारी वो बैठ के शेयर करनी है एक एक करके. बट अंटिल देन, जब तक आपके कॉल्स नहीं आते, जब तक आपके स्टोरीज नहीं आती, हम आपका नाम नहीं बोलेंगे. आप वैसे ही कॉल करके हमें बता दो, ठीक है? अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया तो आई एम रियली रियली सॉरी. वो ना जल्दी जल्दी बात करते हुए कई बार निकल जाता है. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टोरी. ओके, चेक इट आउट. My second grade, this in that Reddit thread that I'm reading, okay? So this girl writes, my second grade boyfriend. I mean, second grade, you're like 7 years old. I mean, do you even know what boyfriend means? Like what, you guys, okay? My second grade boyfriend called another girl pretty in front of me. तो मतलब जेलसी वाली फीलिंग्स तो बचपन से ही आ जाती है यार. वो सिखाता कौन है, मुझे ये समझना है, पूछना है कि सिखाता कौन है. अच्छा, ये स्टोरी हम बाद में कंप्लीट करेंगे. वी हैव अ कॉल. हाय, यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: हाय, हाउ आर यू?
0: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. आई लाइक योर लाफ्टर, आपकी हंसी बहुत अच्छी लगी है मुझे. एकदम दिल खोल के हंस रहे आप, ऐसे मन कर रहा था रिकॉर्ड कर लो.
0: चुड़ैल जैसी तो नहीं लग रही मुझे? कई लोग कहते हैं आपकी हंसी एकदम चुड़ैल जैसी है, करके भी आती है.
1: मुझे पीछे में साउंड इफेक्ट देता है ना, वैसे ही दी. चुड़ैल वाली नहीं पर अच्छी वाली.
0: अच्छी वाली, चलो, दिल को खुश करने वाली है ना. आपने वो सुना है कि लाफिंग लाफ्टर इज कंटेजियस, तो अगर आप मेरी हंसी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी.
1: बिल्कुल ऐसे ही हुआ.
0: तो डू यू हैव ए स्टोरी टू शेयर?
1: स्टोरी का तो पता नहीं है, फनी तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सबका कंसर्न है ये कि छोटे होते हम लोग गा रहे होते थे, 2 मिनट रुक सकते हैं सर के बल, चल सकते हैं, बड़ी जोर से भूख लगी, राइट? पर हाँ. मम्मी बोलती है मैगी कहाँ बनती है 2 मिनट में.
0: हाँ. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. थैंक यू.
1: थैंक यू.
0: हाय, यू आर ऑन एयर, थैंक्स फॉर कॉलिंग.
2: हाय.
0: हाय,
2: हेलो,
0: कैन यू हियर मी?
2: या, नाउ आई कैन हियर यू.
0: I think okay. maybe turn the radio in the background, thoda volume kam, to usse meri awaaz clearly aayegi.
2: Okay, theek hai. Yeah, maine radio band hi kar diya. Okay. So, meri jo funny tha, I don't know if it's funny or whatever, one time I was trying to get out of going to school because it was raining so hard. Yeah. Ghutna ghutna tak paani tha. So, I told my, instead of saying that, I said, Dad, my stomach is hurting, I don't want to go to school.
0: Huh.
2: So my dad got his bike out. He said, get on the bike. And he dropped me off at the school. I had to go to school.
0: Oh. भाई बहाने हमारे पेरेंट्स को पता होता है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, दे नो व्हाट वी आर अप टू, है ना?
2: आई नो. आफ्टर दैट आई नेवर नेवर ट्राई टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू स्कूल.
0: आई नो,
2: बिकॉज़ आई न्यू ही इज गोना कम अप विद सम सॉल्यूशन समहाउ.
0: आई नो. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल.
2: ओके,
0: थैंक यू, बाय. All right, you guys, that was so funny. भाई बचपन में हमने कितने बहाने मारे, कितने झूठ बोले. एक टाइम पे तो मैंने इतने झूठ बोले, मैंने अपने दोस्तों को भी बोला है. मे बी दे वर मेकिंग, एंड दिस वॉज नॉट इवन दैट यंग, आई वॉज मे बी इन हाई स्कूल. Or, you know, they made a plan to hang out in the evening or something. And I was like, yaar, Pooja, I don't feel like going. Mere na tabiyat bahut kharaab hai. Aise karke na, main koi na koi faltu aise bahana mari thi. And wo kehti, Ippi, shut up. You know what you are? You're a pathological liar. I know you are lying. To tu chup karke aa jae yahan pe. So, your friends and your parents know when you're trying to maro a bahana. So, let's not even try that, right? Anyways, so let me finish the story, okay? The one that I had started. So, this girl said, my second grade boyfriend, when she was only 7 years old. Oh, we have another call. Hang on a second. I'll come back and I'll finish that call. Hi.
1: So, this girl said, अभी अभी एक किसी का फोन आया था वो बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे को लगा पुदीन हरा तो नहीं दे दिया उन्होंने
0: पुदीन हरा देंगे तो पेट दर्द कम हो जाना चाहिए राइट
1: वही तो पापा मम्मी ने बोला पुदीन हरा लो और स्कूल जाओ
0: पुदीन हरा लेके फिर ब्रेथ मिंटी हो जाती है उसके बाद पेट का नहीं पता माउथ फ्रेशनर तो बड़ा बन जाता है
1: ओके okay, मैंने इसलिए कॉल किया मेरा हाँ. नाम तो पूछा ही नहीं आपने शिल्पी नाम है मेरा
0: शिल्पी थैंक यू फॉर कॉलिंग आप अपनी स्टोरी बताएंगे
1: अरे वो मैगी वाली मैं ही थी ना आपकी हंसी अच्छी लगी है वही मैं थी
0: अच्छा आई कॉल्ड अगेन ओके अपना नाम बताने के लिए देखो भाई शिल्पी को मेरी हंसी बहुत पसंद आई ठीक है
1: जी
0: बिल्कुल आई एम सुपर सुपर सुपर ग्रेटफुल
1: Thank you. Very nice show. I love it. Thank you so much. Talk to you later. Bye-bye.
0: All right, you guys. I think I was getting another call जब मैं शिल्पी से बात करी थी तो अगर आप मुझे दोबारा कॉल कर रहे थे कोई तो नंबर था तो आप जरूर मुझे कॉल करिए I'll put you on air again. मतलब जो भी है जब तक वो कॉल नहीं आती है होपफुली इस बार मैं अपनी स्टोरी खत्म कर दूंगी सो This girl, she said ki my second grade boyfriend. Achha, chalo call aa gayi. Pehle call le lete hain, fir baad mein khatam karte hain story. 8 baje ke baad. Hi, you're on air. Thank you for calling.
3: Hi, kaise ho aap?
0: Main theek hu. Aap kaise hain? Aap apna naam bataiye aur nahi bhi batana hai to bhi chalega. I mean, no pressure.
3: Naam nahi batate, usko side mein rakhte hain.
0: Chalo, lekin
3: bachpan ki. बचपन की एक स्टोरी शेयर करनी है
0: बिल्कुल शेयर करिए
3: ये मेरे और मेरे भाई की स्टोरी है मैं मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है तो जब वो फर्स्ट ग्रेड में था तब की स्टोरी है तब हम लोग चौल में रहते थे और मेरे भाई का और चौल की मालकिन का थोड़ा ऐसा 36 का आंकड़ा टाइप था राइवलरी था उनका ओके तो एक दिन बारिश हो रही थी मानसून के दिनों में और मेरे भाई को चौल में कैसे रहता था ना वॉशरूम थोड़े दूर रहते थे
0: हाँ.
3: तो मेरे भाई को लगी थी जोर की सुसु और वो बारिश में भीगना नहीं चाहता था फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा है ना तो उसने क्या
0: किया आने वाली है बट आप कंप्लीट करें मैं ऑलरेडी इसको विजुअलाइज कर रही हूँ मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है पूरी
3: तो मैं आपकी पिक्चर थोड़ी कंप्लीट कर देता हूँ तो उसने क्या किया शायद थोड़ी अलग हो आपके दिमाग से पता नहीं तो मेरा भाई बहुत मतलब क्रिएटिव बच्चा है ना तो उसने क्या बोला कि भैया आप एक काम कर दो मैं स्टूल पे खड़ा रहता हूँ दरवाजे में और आप मुझे पीछे से पकड़ो और मैं दरवाजे से बाहर सुसु कर देता हूँ तो मैंने बोला स्टूल पे क्यों खड़ा रहना है वैसे ही कर दे
0: हाँ।
3: तो बोला नहीं स्टूल पे खड़ा रहूंगा तो थोड़ा दूर जाएगा और वापस घर में आने के चांसेस कम है
0: ज्योमेट्री से मैथ करके मेजर किया है कितने एंगल से कहाँ एम कर रहे
3: बस बस तो ठीक है मैंने वो मान लिया उसका क्रिएटिविटी उसको स्टूल दे दिया खड़ा कर दिया और वो गिरे नहीं इसलिए उसका शर्ट पीछे से पकड़ा रहा मैं और उसने वो अपना काम शुरू कर दिया उतने में पता नहीं क्यों लेकिन वो चौल की मालकिन थी
0: oh,
3: वो
0: no.
3: बाहर आ गई छाता लेके
0: oh, no.
3: तो वो चिल्लाने लगी तो मेरा भाई उल्टा उस पे गुस्सा होके बोला कि बारिश में कौन बाहर जाता है सुसु करने के लिए आप कर सकते हो क्या दिखाओ करके
0: देखो गट्स तो है तुम्हारे भाई में है ना
3: अरे बहुत बढ़िया तो वो इतना सही फनी सीन हो गया था ना वो चौल की मालकिन भी तो बाद में हंसने लगी है एक पहली ग्रेड का बच्चा थे, 4-6 साल का
0: पेड़ फुटिया बच्चा मेरे को सुना रहा है बारिश में कौन बाहर जाता है सुसु करने, जब आइए तो करनी पड़ती है यार, क्या करे है ना
3: सही में तो बहुत फनी था।
0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, दैट वाज सो फनी। चलो मेरी दूसरी कॉल,
3: थैंक
0: यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाय यूर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो, हाय, okay,
4: hi, good evening.
0: Good evening. Hi,
4: I have just called to say that I love your show.
0: Aw, thank
4: and,
0: you.
4: Yeah, definitely, like the other lady said, your laughter is contagious.
0: Aw, thank you so much.
4: And yeah, I don't have any story to share today, but I just want to tell you that aapko jaake na wo Reddit ki jo story hai wo khatam kar deni hai, nahi to I'll not be able to sleep because I'll just keep thinking about second grade ki ladki thi and she was 7 years old and she had a boyfriend. Every time you started that sentence and a call came, I couldn't stop laughing. Like, no, the story has to complete today, na?
0: है ना, आज खत्म करके ही छोड़ूंगी मैं स्टोरी।
4: Yeah,
0: मेरे
4: please.
0: Non-stop calls आ रहे हैं, unfortunately.
4: मैं खुद ही कॉल कर रही हूँ।
0: It is on my agenda. Stay tuned. आज अभी अगले 10 मिनट में मैं पूरी स्टोरी खत्म करके ही छोड़ूंगी।
4: Yeah,
0: एक और कॉल मेरी होल्ड पे है।
4: I'll take care. Yeah.
0: Anyways, जो आप मिस्टर मलिक अभी कॉल करें, let me take that call. But thank you so much for your call. Hi, you're on air. Thank you so much for calling.
5: Yeah, चंडीगढ़ रेस्टोरेंट only अरविंद में है.
0: वो मुझे नहीं पता, वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बट हम मुझे तो लगा कोई जूसी स्टोरी सुनाने के लिए, मुझे नहीं लगा मैं गूगल का भी काम करूं।
5: नहीं, नहीं, आप हमेशा तारीफ करते रहते हो ना, हमेशा एफएम पे तारीफ करते रहते हो, तो मैंने सोचा चल पूछ लेते।
0: भाई ये तो चंडीगढ़ बाइट्स जो है वो तो बड़ी सारी जगह पे है, ये मुझे नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली मेरे शो में तो मैंने चंडीगढ़ बाइट्स का कोई गिव अवे नहीं किया अभी तक।
5: चंडीगढ़ बाइट,
0: चंडीगढ़ बाइट बस दो तीन जगह है, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ बाइट्स भी है। थैंक यू सो मच,
5: थैंक
0: गाइस। ये तो सबसे मजेदार वाली चीज थी, ये मैंने सबसे अनएक्सपेक्टेड कॉल थी कि बात करते करते हम स्टोरीज शेयर करते करते मैं गूगल का भी काम कर रही हूँ, लोग नेविगेशन कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थर्सडे ऑफ माय लाइफ, आई एम हैविंग सो मच फन। एनीवेज, हम एक मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं, उसके जाने से पहले मैं अपनी स्टोरी खत्म करती हूँ, नहीं तो वो रेडिट थ्रेड खत्म नहीं होगी। सो माई सेकेंड ग्रेड बॉयफ्रेंड कॉल्ड अनदर गर्ल प्रिटी इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई रोट हिम द लिरिक्स बिफोर ही चीट्स बाय कैरी अंडरवुड इन सेकेंड ग्रेड। ओ माई गॉड, तुम्हें इतना दिमाग कैसे आया कि 7 साल की उम्र में तुमने उसको लिरिक्स लिख के उसको चिट्ठी स्नीक इन कर दी उसके बैग में, दैट यू रोट बिफोर ही चीट्स, डोंट चीट ऑन मी। ओ एम जी, दिमाग भाई कभी भी चल सकता है, आप 6 साल के हो, 7 साल के हो, 8 साल के हो। आई फील लाइक वो सस्पेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया था ना उस स्टोरी में, अब व्हेन आई फिनिश्ड द स्टोरी इट वाज नॉट एज फनी, बट आई थिंक द होल आइडिया दैट आई स्टार्टेड इट लाइक 4 टाइम्स एंड देन आई फिनिश्ड इट फाइनली, आई थिंक दैट्स वॉट काउंट्स। सो गाइज, कॉल मी, डोंट आस्क मी फॉर डायरेक्शंस बिकॉज
6: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
7: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers. Crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next bestsellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhookh ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
12: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me. It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
21: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
22: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
0: Hi, beautiful, beautiful people. Kaise hain aap sabhi log? You are listening to An Evening in Dallas. Yes, this is me, Ippy the Hippie. Aur main thodi si pagal hoon, sanki hoon. And yehi hai mera USP. Because mujhe logon ko hasana bada achha lagta hai. Mujhe khud bhi hasna achha lagta hai. Par mujhe usse zyada gana achha lagta hai. Lekin kai baar gaane ke saath na pressure ban jata hai. Agar aapko nahi pata hai. So then I also have a Bollywood band called the Dallas Bollywood Project. And you know, we do a lot of parties and stuff like that. So agar aapko kabhi entertainment acts ki zarurat padi, do reach out. Because you know, we are really good. I'm telling you. It's so fun. Anyways, वो सब हम बात बाकी बातें बाद में करेंगे. कई बार entertainment करते करते ना stage पे जब मैं जाती हूँ तो अभी जैसे मैं आपको हंसा रही हूँ जोक्स वोक्स बोल के, मैं एक्चुअली स्टेज पे भी वैसी चीजें करती हूँ. तो मुझे लोग कहीं आके बोलते हैं यार तुम स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती, व्हाई डोंट यू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. मैं कहा यार एक एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत है, मतलब ठीक है, अब दूसरा नहीं करना है वहां पे. पता चलेगा कि अभी जैसे मैं आपको जोक्स मारते मारते खुद ही हंस रही हूँ ना, तो पता चलेगा स्टैंड अप कॉमेडी करते करते मैं खुद ही हंस रही हूँ और वहां पे स्टोरीज खत्म नहीं हो रही. फिर मुझे कॉल्स आ रही लोगों की, अरे आपने स्टोरी खत्म नहीं करी, हमें नींद नहीं आएगी. या फिर कोई मुझे गूगल मैप पे चंडीगढ़ वाइट्स की डायरेक्शंस पूछने आ जाएगा. सो एनीवेज वी विल गेट बैक टू दैट लेटर. बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं some unhinged, embarrassing moments that you all remember from your childhood. And if you want to share it on air, we don't have to say your name. You can just share your beautiful memories, which eventually become core memories. Matlab, puri zindagi, marte dam tak yaad rahengi, aisi memories. So, call kariye. Let us put you on air. And then we're going to have so much fun. And uske alawa, main aapko thode Reddit threads aur sunaungi. Wo wala to thoda aimi sa nikal gaya. Matlab, maine to socha tha, bada juicy niklega. बट वो एवे से रख गया. बट आई हैव सम रियली फन वंस बिफोर आई प्ले यू द नेक्स्ट सॉन्ग. एक मैं और रेडिट थ्रेड शेयर करती हूँ, ठीक है. सो दिस पर्सन, दिस गाय गर्ल, डजंट मैटर, डजंट मैटर, दिस इज जेंडर न्यूट्रल, इट कैन बी एनी वन, दे डिडंट स्पेसिफाई. दिस पर्सन सेज, आई वॉज रियली फास्ट एंड आई रियली लव टू टेल एवरी वन दैट हाउ फास्ट शी वॉज, लाइक शी वॉज रियली फास्ट. वी गोना से शी राइट नाउ बिकॉज इट रोल्स ऑफ द टंग अ लिटल मोर इजिली फॉर मी. बट शी रियली लव टू टेल एवरी वन दैट शी वॉज अ रियली रियली फास्ट रनर, यू नो. बट इंस्टेड शी वुड गो अराउंड एंड टेल देम दैट आई हैव द रन्स. And I would run away. I wonder if somebody showed her the door to the toilet, because runs mean something else, you guys. And we have a wonderful call. Let's take this call and then play the song. Hi. Oh no, cut gaya. Oops. Dobare aa jayegi. Chalo aage call. Hi, you're on air. Thank you for calling.
1: Hi, my name is Faiz. I'm calling from the Kerala.
0: Oh, nice. Hi.
1: Hi, ma'am. I want to share my one story, and if you like or not.
0: It doesn't matter. This is sharing time. Up, share kariye. This is a safe space. We are sharing funny, embarrassing stories from our childhood. Go for it.
1: No, it's a little embarrassing, and I'm driving with my family. I have two daughters even.
0: Yeah.
1: So the story, don't ask my age. Maybe on that time he didn't born even.
0: Ha.
1: Okay, so wala jo it's a long back.
0: आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, by the way, just in case, अगर उसमें ज़्यादा मतलब juice हिंदी में से आता है तो हिंदी में बोलिए, कोई tension नहीं है.
1: Okay, so it was long back as a first the condensed milk, you know, we made with the coffee tea, the condensed milk is market, comes in the market.
0: Milkmaid.
1: So on that time, the condensed milk made in the market, and on that time we are having fun to have on the our age, like 14 or 12, 13 sometimes on the school time. So 2-3 friends we made and decided, okay, have a fun with the buy one condensed milk, we'll have share on the evening. Okay, so on that time one of our friend, he was so rude, and he was very rude, and you know the some friend we have some school starting a good school, but they smoke and they use bad language.
0: Bad boys.
1: So one of our friend he was something like this. Okay, so we are finishing our kya bolta hai quota hai na, doodh ka quota. So we are finishing on it. So while we are seeing the guy, our friend, he is coming. So if the one of our friend, oh, this guy is coming, finish it as quick as possible. Okay. So when he's coming to Karib jo aa raha hai na, to us time pe ek friend idea bol raha hai, uska susu kar de andar.
0: Oh, aane
1: ke baad bolega mujhe do khane ke liye.
0: Oh no, तो किया क्या फिर?
1: वन ऑफ आवर फ्रेंड उधर खाने के बाद उधर कुछ सुस्त कर उसके हाथ में लेके वो बाय बाय कर रहे हैं, करने के बाद बोले क्या खा रहे हैं इधर, हाँ हम मुझे दे बोल के वो खुद ही खा लिया पूरा।
0: ओह माय गॉड, ये तो बड़ी सही प्रैंक थी।
1: बाद बोला खाने के बाद बोला ये साला ये क्या खा रहे, ये हम बेलेबी में खाया था मेरे घर पे, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे क्यों खाया, ये तो बहुत बुरा है, तुम लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं लिया।
0: भाई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, वो मिल्कमेड नहीं, वो सुसु है, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा नमकीन हो गया।
1: नहीं बताया अभी तो किसी के नहीं बोला, किसी वो भी बेचारा अभी तक तो नहीं जानता है, पहले मैं अमेरिका के सबके पास बोला।
0: OMG, no, thank you so much for sharing for us जी, and before we go on, thank you so much for your call and sharing.
1: Thank you guys,
0: that was such a funny story. अगर आप के पास ऐसी कोई मजेदार juicy juicy stories है तो जरूर call करके हमें बताइए, and we will make put it online, okay? And this is enjoy this next song in the meantime.

0: गाइस, कैसा लगा आपको वो वाला गाना? मैंने तो बहुत सालों बाद वो गाना सुना है. व्हेन दैट सॉन्ग केम आउट आई वाज सच अ ह्यूज ह्यूज फैन. मैंने जाके पहले ना टीवी पे उसके वीडियोस आने लगे, एमटीवी चैनल भी वगैरह पे ना उसके वीडियोस आने लगे. मैंने कहा यार ये क्या सही है. फिर बाद में पता चला द लीड वोकलिस्ट इज ऑल्सो अ डॉक्टर, विच मीन्स वॉट यू कैन हैव टू करियर्स इफ यू वॉन्ट टू इन लाइफ. आई मीन हु इज स्टॉपिंग यू, राइट? कुछ भी करो दुनिया में, बिंदास रहो, लाइफ अपने ड्रीम्स पूरे करो और क्या. बट वो बोलते बोलते मैं तो ये बोलना भूल ही गई दैट आई हैव ए वंडरफुल गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आर यू क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट? दैट्स राइट गाइस, फन पिज्जा किचन, वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. चाहे आप वो अचारी पनीर पिज्जा खा रहे हैं या तंदूरी चिकन पिज्जा, सारे एकदम यमी यमी पिज्जाज हैं. और भी कुछ फ्लेवर्स हैं वहाँ पे. अगर आप गए हैं तो मुझे बताइए, मैं भी जाऊँगी. मैं अभी तक गई नहीं हूँ बट मुझे लगता है जाना पड़ेगा. You can go to funpizzakitchen.com for more details and have a look at their menu. वैसे तो giveaway का मौका है. This is the time कि आप $10 का gift card जीत सकते हैं इस giveaway में. तो giveaway जो है उसका सवाल मेरे को पहले बोलना चाहिए था. गिव अवे आ रहा है तो सब एकदम कान पकड़ के बैठे रहते हैं. नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार गाना खत्म भी नहीं होता पहले ही कॉल्स आनी शुरू हो जाती है. तो इसीलिए मैंने गिव अवे पहले नहीं अनाउंस किया. तो अभी जो आपने गाना सुना यूफोरिया, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार बैंड था, उस गाने में देखा मैंने बोला ना कॉल्स आनी शुरू हो गई. मतलब मैंने क्वेश्चन भी नहीं बोला, यार क्वेश्चन तो बोलने दो फिर आने दो कॉल्स. उसमें जो यूफोरिया ने उसके गाने में, यूफोरिया के अलावा देर वॉज दिस रियली रियली फेमस क्लासिकल सिंगर हु वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन दैट सॉन्ग. वॉट इज द नेम ऑफ दैट क्लासिकल सिंगर? और उसकी उनकी आवाज पीछे से आ रही है ये वाली जो आवाज जिनकी है ना, वो कौन गा रहा है? ठीक है, आप मुझे कॉल करके बताओ. दैट इज द गिव अवे क्वेश्चन. हाँ हाँ, देखा कॉल बंद हो गई. चलो अब कॉल करो और मुझे कॉल करके बताओ. दैट इज द गिव अवे क्वेश्चन. अभी जो मैंने गाना बजाया धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम, उसमें जो बैकग्राउंड वॉइस में जो आवाज आ रही है हे माजी रे, वो किसकी आवाज थी? कम ऑन, अरे वी हैव अ कॉलर. हाय, यू आर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर टू माय क्वेश्चन? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस योर नेम.
1: Anurag.
0: How are you?
1: Yes, Anurag.
0: Okay, I'm very good, Anurag. Thank you for asking. कोई मुझे पूछता ही नहीं है how am I. I'm very well. I'm a little tired, but I think the caffeine is working. Okay, so do you have the answer to my question?
1: Yeah, the answer is Shobha Mudgal.
0: Yes, that is correct. Wonderful. Congratulations, Anurag. आप जीत चुके हैं फन पिज्जा किचन का $10 का गिफ्ट वाउचर. तो अभी हम एक काम करेंगे, एक दूसरा गाना बजाएंगे. तब तक मैं आपको ऑफ एयर लेती हूँ, ठीक है? एंड देन यू कैन गिव मी योर डिटेल्स लाइक फोन नंबर एंड ईमेल आई एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन गो कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. दिस इज बाय द वे फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को, जस्ट सो यू नो. ठीक है?
1: थैंक यू.
0: थैंक यू.

ऑल राइट गाइज, वी आर बैक. आपको गाने पसंद आ रहे हैं कि नहीं? मुझे तो गाने बड़े अच्छे लगते हैं. दीज आर लाइक द इवनिंग वाइब सॉन्ग्स, यू नो, देयर इज लाइक गिटार सॉन्ग्स एंड ऑल दैट. एनीवेज, गोइंग बैक टू आवर थ्रेड, रिमेम्बर गाइज, प्रैंक्स इज वन थिंग विच इज वेरी फन. जो अभी हमने लास्ट दो स्टोरीज जो आप लोगों ने शेयर करी, दोज वर सम रियली फनी प्रैंक्स एंड दैट्स टोटली ओके. हाउ एवर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
2: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
1: के टू ड्राइव मतलब
2: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
2: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
9: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
10: Astrology readings for guidance only and results may vary.
11: Hey maps, take me to my desi grocery store.
12: Calculating route, rerouting.
11: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
11: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
13: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
12: Your new destination has arrived.
14: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
15: Hello guys, we are back and I'm your favorite Ippy the Hippie. Thank you so much for the amazing calls that I've been getting. So I'm so glad ki aap mujhe call karke ye bata rahe hain ki aapko meri मेरे जोक्स पसंद आ रहे हैं, मेरे गाने पसंद आ रहे हैं. आई एम एब्सोल्युटली फ्लोर्ड. थैंक यू सो मच गाइज. आई नो ये गाने थोड़े से डिफरेंट है, पर ये भी बॉलीवुड ही है. आई मीन बॉलीवुड के अलावा तो है ही नहीं, मतलब. या फिर अगर बॉलीवुड ओरिजिनली नहीं है लेकिन ये सिंगर्स बॉलीवुड में अब्सॉर्ब हो गए हैं धीरे धीरे, यू नो, इस तरह से. एंड दीज आर लाइक क्लासिक्स विच वी ऑल ग्रू अप विथ, यू नो, इन द 90s एंड एवरीथिंग. हम, यू नो, हम वो मिलेनियल जनरेशन से हैं, जेन जी के गाने हैं थोड़े बहुत, एंड यू नो व्हाई नॉट, वी शुड लिसन टू सम ऑफ दीज ओल्ड सॉन्ग्स. एनीवेज, We are now moving on to the next segment of my show. तो अगर बच्चे हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, guys, 8:30 बज चुके हैं, आपको सोने का टाइम है थोड़ा अभी, थोड़ा हम, you know, वैसे तो as such कोई grown up content है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, but however we are still going to spill some secrets because we are trying to be unhinged, we are trying to be bold, we are trying to be risque over here. तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, दिस इज अनदर रेडिट थ्रेड. आई लव दीज रेडिट थ्रेड्स बिकॉज समटाइम्स यू गेट टू हियर दीज इनक्रेडिबल स्टोरीज विच आर एब्सोल्युटली लाइक अनहिंज्ड, एंड यू आर लाइक ओ एम जी, ये सच में ऐसे हुआ था यार, ये बना रहे हैं ऐसे, हमें उल्लू बना रहे हैं कि एक्चुअली में ये हुआ था. तो गाइज, पता नहीं किसी ने कमेंट किया है, किसी ने लिखा है, तो आई मीन लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद ऐसे हो रहा है. वी आर नाउ स्पिलिंग डीपेस्ट एंड द डार्केस्ट फैमिली सीक्रेट्स. हाँ जी, आपकी फैमिली में ऐसा कोई सीक्रेट, आपको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे, आपको एयर पे भी नहीं लाएंगे हम. अब हम करेंगे क्या, आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे प्राइवेटली अपनी स्टोरी सुनाइए कि हाय, मेरा नाम है मिस्टर एक्स और मेरी स्टोरी ये है कि मैंने अपनी फैमिली में ऐसा काम किया था, ऐसा कांड किया था, लेकिन किसी को पता नहीं है और इसीलिए मैं उसको लेके चुप रहता हूँ. तो हम उसको थोड़ा सा फिल्टर भी कर लेंगे बिकॉज नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन एयर राइट अवे. तो आप मुझे प्राइवेटली बताएंगे, आई एम नॉट गोना पुट यू ऑन एयर, एंड देन if it kind of matches the vibe, which is not way too outside our box, you know, then we will definitely share it. But yes, so this is juicy, you guys. So I found this thread where people were sharing their family secrets. So check this out. This girl writes, my mom died when I was 9 years old. When I turned 20, I needed her death certificate for something, you know, whatever, bank, scholarship, whatever. किसी भी चीज के लिए चाहिए होगा, हमें नहीं पता. We listen and we don't judge, okay? We listen and we don't judge. So she went and asked for her mom's death certificate from her dad, and the dad didn't have it. So the dad was like, "अच्छा ठीक है, I don't have it, unfortunately, I don't know." So then they went to public records because US में है, public records भी होती है, government के पास गए. Can I get a copy of my mother's death certificate because I needed it for some paperwork, okay? And they looked up and they realized there is no death certificate at all. So then they landed up hiring a detective, and guess what, you guys? They found out the mom was alive the whole time, like 10 years, because she assumed her mom died when she was 9 years old, and now she's looking for it at the age of 20. Her mom was alive the whole time, and the mom was living in Arizona, and she faked her death to her husband and her entire family. What? Oh my god, that's shocking. Matlab koi to majboori rahi hogi. We understand, you know, we listen and we don't judge, okay? We listen and we don't judge. But फिर भी that's juicy, and we are not going to say किसकी story थी, क्योंकि किसी की भी story हो सकती है. So do you have anything like that? Then check this next one out. The next one is actually a little funny. This is for all my ladies, my young ladies. Are you listening? You should take some notes over here. This is absolutely, absolutely savage. Okay, take notes. Notes लिखिए, अपना notepad लेके. इरशाद है, माई ग्रैंड मदर डिडंट डिवोर्स माई ग्रैंड फादर. ठीक है, द ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू फाइल फॉर डिवोर्स, बट द ग्रैंड मदर अपेरेंटली डिड नॉट साइन द डिवोर्स पेपर्स. सो वेन ही डाइड शी गॉट ऑल हिज मनी एंड ऑल हिज एस्टेट. व्हाट? ओ माई गॉड. लेडीज, आर यू टेकिंग नोट्स? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. एनीवेज, वी विल कम बैक and talk some more fun stuff. And until then, enjoy the song.

right, guys. So if you just joined in, अगर आपने अभी join किया है, then मैं आपको बता दूँ ये कौन सा show है. This is called An Evening in Dallas, and you are listening to Ippy the Hippie. और मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत सारी juicy juicy stories जो कि काफ़ी ट्रू है. कई बार हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम प्रिटेंड करते हैं कि ये भाई रियलिटी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी होती है. तो हर रोज़ आई एम गोन बी हियर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 7 से 10 बजे तक. वी गोन हैव अ फन आवर इन द बिगिनिंग एंड देन वी गोन टॉक अबाउट सम रिस्की बिजनेस एट द एंड ऑफ इट. चाहे वो आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपकी सीक्रेट्स के बारे में हो, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऐसी कुछ बातें होती है दैट वी डोंट वॉन्ट टू शेयर विद आर फ्रेंड्स और फैमिली और द थेरेपिस्ट. सो वी विल कीप इट अनोनिमस. यू शेयर इट विद मी इन कॉन्फिडेंस. मुझे अपना नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं. एंड हम कई बार वो चीज़ें बोल के ना मन हल्का लगता है, तो वैसे ही हम कुछ कन्फेशंस करेंगे, डीप डार्क कन्फेशंस. और अगर वैसे भी नहीं है, कोई मज़ेदार स्टोरी है तो भी चलेगी यार, तो भी चलेगी. Anyways, this part of the show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. So call 469-942-9888 or visit agfintax.com. That's right, guys. Taxes are brutal. Taxes are not fun. Trust me. I have tried to do it as a self-employed independent contractor for many years and it is so complicated. Gosh, I wish hamare India mein itna matlab kuch waise koi experience mil gaya hota to I would have been a lot better, but kyunki meri don't be like me, don't try to do everything by yourself, just call these guys, they'll help you out. Anyways, aage badhte hain. We are talking about deep dark family secrets. So मैं आपके लिए कुछ मजेदार जूसी स्टोरीज लाई हूँ. लेट मी टेल यू वन मोर लिटिल थ्रेड एंड देन आई विल प्ले यू ए फन सॉन्ग आफ्टर दैट. ओके, दिस वन सेज, ओ माय गॉड, दिस वन्स वाइल्ड यू गाइस, चेक इट आउट. माय ग्रैंडफादर्स ओल्डेस्ट सिस्टर सेड शी हैड शी माय ग्रैंडफादर्स ओल्डेस्ट सिस्टर सेड दैट शी हैड समथिंग टू से, बट फिर उन्होंने बताया नहीं उनको कि क्या था उनको जो बताना है. शी सेड कि मेरे को एक सीक्रेट बतानी है भाई. तो उन्होंने बोला हाँ बताओ. तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी. तो ऐसे करते करते ना मेनी इयर्स पास्ड बाय एंड देन शी फॉरगॉट अबाउट इट, ही आल्सो फॉरगॉट अबाउट इट. फिर ऑन हर डेथ बेड, शी वाज लाइक इन हर 90s और समथिंग, यू नो द सिस्टर, ऑन हर डेथ बेड शी रिवील्स टू दिस गर्ल्स ग्रैंड फादर दैट एक्चुअली मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं तो असली में तुम्हारी मम्मी हूँ. व्हाट इन द लैनिस्टर्स इज हैपनिंग ओवर हियर? What? No, you guys. This is weird, right? Anyways, but believe it or not, this happens more times than you think. And iske upar bahut sari movies bhi ban chuki hai. I'm sure aapne kai sari movies dekhe honge, shows dekhe honge. But anyways, go enjoy the song and then we'll come back and let's talk some more, okay?

And we are back, guys. We are revealing some deep and dark family secrets जो आपने शायद किसी के साथ शेयर करे या नहीं करे, और नहीं करे तो आप ये रेडिट थ्रेड्स ही एंजॉय करिए, क्योंकि ये भी काफी डीप एंड डार्क है. कई बार हमें दूसरों की स्टोरीज सुनने में जो मजा आता है वो अपनी स्टोरीज बोलने में उतना मजा नहीं आता है, है ना. और वैसे मैं लाइसेंस थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं आपको कोई एडवाइस तो नहीं ऑफर कर सकती इस टाइम पे, बट मैं सुन जरूर सकती हूँ. कई बार हमें एक दोस्त की जरूरत होती है एक कुछ सीक्रेट सी बात बोलने में, और जो हमारे अपने खुद के जो दोस्त होते हैं ना, हु नो यू रियली रियली वेल एंड स्टफ, दे आर प्रीटी जजमेंटल. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी जस्ट शेयर एंड वी डोंट जज, वी लिसन एंड वी डोंट जज. ओके, सो टेल मी योर स्टोरीज, मुझे आप प्राइवेटली बताइए फोन पे, एंड देन you know, we don't have to put you on air. We are definitely not going to put you on air, okay? So call me, tell me something deep and dark. Anyways, the next Reddit thread that I found that was super, super juicy. Oh my God, this is like, sounds like a plot from a TV show, you guys. It says, my grandfather took someone out, मतलब काट, मतलब एकदम कटली कर दिया उसका, on the train. Oh my gosh, my grandfather, guys, this sounds like a little criminal, honestly though, but whatever, we listen and we don't judge. It's not my story, it's just picked up from the Reddit threads. My grandfather took someone out on the train and then he took his identity and lived like that for the next 30 years. Stop. You know, have you guys seen that show Mad Men? I was a huge fan of that show जब वो आता था, अभी भी आता है HBO Max पे अगर आपको देखना है. This sounds like Don Draper, honestly. I don't know how much of this is true. I really don't know how much of this is true. Or maybe this person just got inspired from Don Draper and just put it in the comments. But like, it is pretty juicy, okay? तो इसीलिए एक कोट के साथ मैं आपको दूसरे गाने के लिए, दूसरे गाने पे आई एम लीडिंग यू इनटू द नेक्स्ट सॉन्ग. द कोट इज, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो भाई दूसरों पे इल्ज़ाम लगाओ और वहाँ से खिसक जाए, ठीक है. सिंपल, आपको उसमें और सोचने की जरूरत नहीं. जब कोई बात बिगड़ जाए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाओ, वहाँ से फिर खिसक जाए. ऑल राइट, इन्जॉय दिस फनी, नॉट फनी सॉन्ग एक्चुअली, वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी रोमांटिक सॉन्ग. तो आप एंजॉय करिए गाना, एंड

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jago Times available hai ek click by thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
11: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
12: Hello, beautiful friends and people and listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is Ippy the Hippie. Thank you so much for all the beautiful, amazing messages जो आप मुझे break में या गानों के बीच में call करके मुझे देते हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतना प्यार तो भाई मुझे अपने लोगों से नहीं मिला जितना प्यार मुझे आपसे मिलता है. आप लोग मुझे call करके जो बताते हो ना कि आपको मेरे गाने पसंद आ रहे हैं या फिर मेरी opinions, मेरी bold opinions पसंद आ रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. मैंने कहा चलो कोई तो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाला, नहीं तो कई बार ऐसे नहीं होता कि हम लोग कुछ बोले जा रहे हैं, वे ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, सबको रियलिटी दिखा रहे हैं, आईने में शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन मतलब देर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कभी ना कभी रेजिस्टेंस होती है, सबको सारी चीजें पसंद नहीं आती, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ा कई बार PG-13 करना पड़ता है, लेकिन भाई वी ट्राई एंड स्टिल मेक आर ओपिनियंस, है ना, ऐसे है ना. एनीवेज, तो जाने से, ब्रेक में जाने से पहले आई हैड दिस इनक्रेडिबल कॉल फ्रॉम दिस पर्सन. उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके लिए है, आपने ये गाना रिक्वेस्ट किया, अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, थैंक यू. मैं तो आपकी मैं जैसे आपकी जिंदगी में आ गई, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आ जाए एकदम मजेदार, तो आइए और इस गाने को इंजॉय करते हैं, और उसके बाद आके थोड़े से एड शैड बोलेंगे और थोड़ी सी और स्टोरी सुनेंगे. क्यों

are back, you guys. We are sharing our deepest and the darkest family secrets. वैसे family secret अगर family की secrets नहीं भी है, family in quotes, और कोई और अलग से secret है वो भी चलेगी. हम secret share करें यार. मैं आपको air पे नहीं डालूंगी. आप मुझे अपना नाम मत बताइए, कुछ identity बताने की जरूरत नहीं. आप थोड़ी सी gossip ही दे दीजिए, क्योंकि भाई हमें gossip share करना तो बड़ा पसंद है. We all love it. That's why there are talk shows. That's why there's Oprah. Everyone just shares and shares. Don't you know, America में वो बच्चों के classroom में भी एक sharing stick होती है, and then you keep passing it on, and then they keep sharing and everything, right? So that's what I'm saying. We love sharing here in America. Everyone loves talking about feelings. India में लोग feelings के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. I don't think मैंने अपने parents को I love you कभी मुझे बोलते हुए सुना है. वो मुझे भी नहीं बोला उन्होंने कभी I love you बेटा, तुमने बहुत सही किया. तो जब भी उनके आँखों से आंसू निकल जाते हैं, या फिर मतलब उनकी शक्ल पे expression बन जाते हैं ना, तो मैं समझ जाती हूँ अच्छा ये I love you बोल रहे हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं. क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे जेन एक्स, एटलीस्ट मिलेनियल जनरेशन के पहले जो भी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया है. व्हाट डू यू थिंक? आप कभी अपनी फीलिंग्स, आई थिंक आजकल के जमाने के बच्चे, पोस्ट मिलेनियल जनरेशन, मिलेनियल्स एंड जेंजीज एंड ऑल, वी लव टॉकिंग अबाउट आवर फीलिंग्स एंड वी आर वेरी ओपन अबाउट इट आल्सो. बट उसके पहले लोग ज्यादा उतनी फीलिंग्स के बात नहीं करते हैं. तो आपको क्या लगता है? एनीवेज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस. स्टोर ओनर्स, दिस वन्स फॉर यू. Ravi's summer kickoff is back. Mark your calendars for June 3rd, June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's bigger. The entire warehouse, it turns into a tropical experience. Do you have your Mai Tais and your mojitos and your piña colada? You need to take one of those and then go there. No, I'm just kidding. I just made that up. But you should still go there anyways. Expect crazy deals, new product launches and free gifts all day. Mujhe bhi yeah, free gifts. Mujhe koi gift nahi deta. Meet vendors, discover bestsellers and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse. 11029 Harry Hines Boulevard, Building 8, Dallas, Texas 75229. अगर आपको नहीं मिला है तो Google पे जाइए. Google Maps है, Apple Maps है, कितने सारे तो मैप और नेविगेशन सिस्टम है. वहां पे जाके आप ढूंढ सकते हैं रवीज इम्पोर्ट वेयरहाउस कहाँ पे है. और जरूर जाइए. याद रखिएगा, जून 3rd एंड जून 4th अभी आने ही वाला है. और मेरे को मत पूछिए कॉल करके कि डायरेक्शंस के लिए चंडीगढ़ बाइट्स या कहीं और की डायरेक्शंस. भाई मेरे पास मैप नहीं खुला है सामने, और अगर खुला भी होगा तो मेरा काम नहीं है वो बताने का, अनफॉर्चुनेटली. तो आपको थोड़ा सा मेहनत खुद ही करना पड़ेगा. भाई हम गूगल थोड़ी ना है. आई एम नॉट चैट जीपीटी एंड आई एम नॉट सिरी एंड आई एम नॉट क्लॉड और एनीथिंग. यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ वर्क योरसेल्फ एंड अ लिटिल बिट रिसर्च. एनीवेज, दैट बीइंग सेड, we'll do one more Reddit thread, because कोई अपनी secrets नहीं share करा है तो मैं ही share कर देती हूँ जो मेरे को मिली है online. तो this person writes, I remember speaking Russian growing up when I was a kid, but now when this person asks his or her family, they all deny it. Girl or boy, whoever you are, I think they are Russian spies. I think your family is probably Russian spies living in America, and they don't want anyone to find out. So maybe that's why you spoke Russian as a child. या फिर तुम्हारी पिछले जन्म की मेमोरी भी हो सकती है. ऐसा क्या है, वो भी होती है कई बार, है ना? आपने पढ़ी है तो नहीं पढ़ी है तो मतलब हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है. या तो वो स्पाइज हैं या नहीं है, वो हम बाद में पता करेंगे. एनीवेज, आप ये गाना एंजॉय करिए. एंड दिस इज एतबार बाय ज़ेबन हानिया.

वाह वाह। अभी अगला जो गाना मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ ना, वो भी बहुत सही है। उसकी एक्चुअली बड़ी फनी स्टोरी है। मैंने ना ये गाना पहले सुना नहीं था। ये इस फिल्म का है जिसमें इट फीचर्स परिणीति चोपड़ा एंड अर्जुन कपूर, एंड इट्स फ्रॉम दैट फिल्म इश्क ज़ादे। ठीक है, इशक ज़ादे, इशक ज़ादे, इश्क ज़ादे नहीं, देयर इज़ एन ए इन द मिडल, इशक ज़ादे। तो एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनका नाम भूल गई अभी, बट ही यूज टू बी ए वी जे ऑन चैनल वी बहुत साल पहले। आई डोंट थिंक अब चैनल वी एग्जिस्ट भी करता है, अगर है करता है तो आई डोंट नो, ढूंढना पड़ेगा। बट चैनल वी वॉज दिस ह्यूज म्यूजिक चैनल। हाँ, तो चैनल वी में ही वॉज दिस वी जे, जैसे मैं आरजे हूँ वो वी जे थे, ऐसी बात बात करते थे एंड स्टोरी वोरी सुनाते थे। तो ही हैज दिस लाइक लिटिल बिट ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब कॉल द मिस हर्ड लिरिक्स। बेसिकली ही विल टेक ऑल दीज सॉन्ग्स और उनको सुन के वो कोशिश करते थे कि ये बजा क्या रहे हैं। तो ये वाला गाना जो था ना, मैंने पहले नहीं सुना था, आई हर्ड इट फ्रॉम हिज स्टोरी एंड इट वॉज बेसिकली मैं परेशा परेशा परेशा परेशा एंड दिस इज अ मिस हर्ड लिरिक्स, आंटी शेवर कहाँ आई डोंट नो, पता नहीं, अंकल से पूछते हैं आंटी शेवर कहाँ, बट ऑल्सो आंटी आप शेवर बोरो क्यों कर रहे हो, गेट योर ओन शेवर और गो टू द पार्लर। अगर मुझे मुंडवानी है ना, थ्रेडिंग कराओ, दैट्स मच बेटर देन बोरोइंग अंकल्स शेवर। सो एंजॉय दिस सॉन्ग एंड आई रियली एंजॉयड दैट लिटिल मिस हर्ड लिरिक्स सीरीज ऑफ दिस वीजे।

0: unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
3: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
0: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next bestsellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
11: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
12: And guys, we are back. Jaane se pehle, I was playing this request. Unfortunately, commercial thoda jaldi aa gaya. So I will play this song for you now. This is Adhure.

रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस।

गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉल्स. आई गेस आपको मेरी आवाज़ में, मेरी टोन में पता चल ही गया होगा कि, और मेरे गाने के चॉइस से भी पता चल गया होगा कि हम थोड़ा, हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, क्योंकि मैं जिस एनर्जी और जिस जोश शोरों से, जोरों शोरों से और जिस जोश के साथ, और मैं जो खुशियां लेकर आई थी थोड़ी मज़ेदार एंटरटेनिंग बात करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है मेरी टीम से. और क्योंकि कुछ लोगों को वो थोड़ी दबंग बातें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्ले इट अ लिटिल सेफ. बट व्हेन आई गेट कॉल्स लाइक दिस, जो अभी मिस्टर अहमद आतिक जी ने मुझे कॉल किया, कहते हैं आपको क्या हो गया, आपकी बातें इतनी मज़ेदार हो रही थी, गाने तो ठीक ही थे पर बातें आपकी ज़्यादा मज़ेदार हो रही थी और हम तो आपकी बातें ही सुन रहे थे, इस वजह से हम ये ऑनलाइन मतलब रेडियो सुन रहे थे, आपकी बातें ख़त्म हो गई, चुप हो गई, आप कैसे कैसे हो गया. मैंने बोला एक्चुअली आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं तो आई थी पूरे जोरों शोरों से इंटरेस्टिंग सी बातें लगा के बोलने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं. कुछ हमें कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है, मतलब जिंदगी में, जिंदगी ऐसी होती है ना कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, तो आप देन यू हैव टू ड्रॉ बैलेंस कि आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हो, कुछ लोगों को खुश नहीं कर सकते हो. तो मतलब अगर चलो माना कि चलो ये 10-11 बजे का शो होता तो हम थोड़ा और फिल्टर्ड कंटेंट करते, थोड़ा और सेफ प्ले करते, लेकिन अब मुझे लगा कि चलो 9 बजे के, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, अब यहाँ पे हम मज़ेदार बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना. लोगों सुनना भी, मतलब सारी चीज़ें सुननी होती है, और हम अमेरिका में हैं, अमेरिका में देर इज़ सो मच फ्रीडम, देर इज़ सो मच लिबर्टी एंड एवरीथिंग. तो जब मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज लेकर आती हूँ जो सुनने को हमें नहीं मिलती है, तो कई लोगों को बहुत पसंद आती है. सो फार मुझे जो कॉल्स आ रही हैं शाम से, सबको मेरी बातें इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, सबको मेरी स्टोरीज इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, खुद अपनी स्टोरीज भी शेयर कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन जब कई बार आपसे, आपके हायर अथॉरिटी से जब आपका रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो कई बार फिर हम चुप हो जाते हैं कि चलो यही है ज़िंदगी, ऐसे ही करनी पड़ती है, तो थोड़ा मूड भी ख़राब हो जाता है. इसीलिए मेरा अभी थोड़ा डाउन फेज आ गया है. आई होप अगले मंडे आप दोबारा ट्यून इन करेंगे और दोबारा और गाने सुनेंगे, और तब तक के लिए मैं आपको 2-4 गाने और बजाऊंगी. होपफुली मंडे तक थोड़ा क्लियर और हो जाएगा. लेकिन देखो भाई, दुनिया में सबको हम खुश नहीं कर सकते. कई बार यू जस्ट हैव टू फ्लो लाइक द मिसिसिपी रिवर, एंड दिस इज इन द वर्ड्स ऑफ इपी द हिपी, बिकॉज वी लव बीइंग बोल्ड, वी लव बीइंग फॉरवर्ड, वी लव बीइंग चैलेंज्ड. यू नो समटाइम्स अगर जिंदगी में हमने कभी चैलेंज नहीं किया होता, आई गेस आई एम गेटिंग वन कॉल, सो दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट कॉल दैट आई एम गोना टेक ऑन एयर. सो लेट्स सी. Hi, you're on air. Thank you for calling. Hi, you're on air. Thank you for calling. Hello? Hello? कट गया यार. कोई बात नहीं, कट जाता है कॉल. मुझे ना बीच में अभी गूगल पे डायरेक्शंस तो मांगने आए थे आज, पर मुझे एक रॉन्ग नंबर भी आ गया. पता नहीं किसका आया. कहते ये इस वाली कंपनी का ऑफिस है क्या. मैंने कहा नहीं यार, ये तो फन एशिया का ऑफिस है. पता नहीं किसका कॉल आ गया. द पर्सन हु वॉज कॉलिंग मी, अब अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं देन यू कैन कॉल मी बैक. आई विल नॉट पुट यू ऑन एयर एंड एवरीथिंग. यू टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट्स पीपल्स प्राइवेसी. बट तब तक के लिए आप ये वाला गाना इन्जॉय करिए, एंड होपफुली एवरीथिंग गोज स्मूथली इन योर लाइफ.

गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल हार्टफेल्ट कॉल्स. आपको अगर आप रेडियो सुन रहे हैं और अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस अ चेंज इन माय टोन. जैसे मैं पहले बोल रही थी, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम यू नो फ्रॉम द कंटेंट बिकॉज सम पीपल डोंट लाइक इट एंड सम पीपल एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू ऑल हु आर लिसनिंग एट दिस आवर एट लीस्ट you guys are loving the content and it's so amazing. abhi jo aapne call karke, abhi I just got a call from someone, abhi mujhe unhone apna naam nahi bataya and he wanted to be anonymous and I absolutely understand it. aapne jab mujhe call karke bataya that you are absolutely loving the choice of music that I'm playing because it's different and you like the content because it's brave, it's courageous, it's unfiltered, it's out there. I mean, ठीक है, it's not हम गाली शाली तो नहीं दे रहे यार, हम मतलब सब PG-13 ही रख रहे हैं, but it is the truth, and truth is sometimes a little harsh, and sometimes truth is a little brutal, and sometimes truth, actually most of the times truth is funny, and a lot of the times truth can also hurt some people's feelings because some people don't want to face the truth, and I totally understand there are some audiences who don't like the kind of unfiltered content because they are living maybe I don't know 30 years ago India ka jo 30 years ago. Actually coming back to that, main actually ye bahut pehle bolne wali thi. Do you guys know what Veer Das is? Veer Das is like this incredible stand-up comedian. He had come to Dallas I believe a couple of months ago and he performed this like sold out show at the Majestic. And I absolutely love Veer Das. And Veer Das has this bit where he talks about in America. He generally says, you know, there are two Indias in this world. One is that India that we guys grew up in, which is in India, which is liberal and modern and forward thinking. And, you know, bold and making decisions and making changes and doing all of this. And one is your parents' vision of what India used to be way back in the 80s or 90s when they had actually moved to America and they are still stuck in that. Sometimes I do feel that when I first moved here, na, to main yahan pe jo yahan ke jo Indians hai, I used to look at them, I'm like, whoa, यहाँ पे तो मेरे घर पे भी इतनी रोज पूजा नहीं करते कि यहाँ पे जितनी पूजा होती है. एंड आई व्हाइल आई रिस्पेक्ट इतनी पूजा करना एंड ऑल दैट गुड, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, चॉइस होती है, सबको करना चाहिए, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा इंडियन है. इतनी इंडियननेस तो हम इंडिया में रह के हमने इतनी इंडियननेस नहीं करी जो यहाँ के इंडियंस करते हैं. आई मीन दे आर लाइक ओवरली अटैच टू देयर कल्चर एंड देयर रूट्स व्हिच इज अमेजिंग. But you guys, you all need to also move forward with times because India has changed from when you left and you have to adapt your thinking to what the world is going. The world is changing. Agar hum usi mein, main apne dad ko bhi kai baar bolti hu. Mere dad hai. My own father is one of those people and I keep telling him ki bhai wahan se bahar niklo, agar usi mein aap fase reh jaoge na, then it's going to hold you back. You're not going to progress in life if you just keep विजुअलाइजिंग कि हमारे टाइम में ऐसे हुआ करता था तो हम ऐसे ही करेंगे और ये सारी चीजें हम कैसे बोल रहे हैं. यार मूव ऑन विद इट, दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल. बॉलीवुड फिल्म्स में भी होता है एंड यू नो इट्स प्रीटी नॉर्मल. एनीवेज तो मेरा तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया बिकॉज मेरे को रेजिस्टेंस मिली, बट आपने जब इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे बोले, कॉल करके बोले कि लिसन यू जस्ट डू योर थिंग, play the music because you're doing it so well, say whatever you want, we are all listening, we are here with you. It makes me very very happy when I get so many calls and so much encouragement from my listeners because you guys are the reason that I am here and I have a regular slot. So thank you, I'm giving you lots of kisses. Agar aap dekh rahe hain wo screen pe jo aata hai, Fanisha ka jo screen aata hai, jo app pe dekh rahe hain, aur agar nahi dekh rahe hain तो सुन भी लीजिए, मतलब फ्लाइंग किसेस की आवाज आ रही है, मुआ मुआ मुआ मुआ मुआ. ओके एंड इसी के साथ आज का हम शो यहीं पे खत्म करते हैं और आपको मैं मिलूंगी मंडे को शाम 7 बजे. रेगुलर लिसनर्स बनिए और अगर आपको मेरा सेगमेंट इतना पसंद आ रहा है तो एक ईमेल डाल दीजिए यार फनेशिया को, उनको भी पता चले भाई हम भी मेरे मेरे भी फैंस कुछ ऐसे हैं जिनको पसंद आ रहा है
और बाकी ये वाला गाना एंजॉय करिए, भूल जा, ये सारी चीजें होती रहती हैं यार.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: जान वाले ने।
1: Dallas, are you ready? Java Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, mucho much.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: तुम दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया, हमसे कतई प्यार नहीं था।

0: Order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
0: Hey Dallas! Still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah! It's time to level up! If you got talent, we got you! Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो। फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। फॉर मोर देन 40 इयर्स, रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: लॉबी मुंडियो, जड़ी टीम जीतूगी उन्हें मेरे वालों पैसे ते बोल्ट ते हार नाला नू मेरे वालों बहुत सारा प्यार।

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia. 104.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: help me.
1: Kaash,
0: please help me.
1: Tu meri aankhein bhar de.
2: Aise kaise gayab ho gaye?
3: Pata nahi sir.
2: Arey, recordings lined up hai, shows always kiye hue hai. कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों.
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

Playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: The Heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: Then,

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: From Chennai to Dharavi, total galiji machi modi na kani kali. Goli soda pola yenna sindi na ka pongga. Hip hop la yengala paru urukulla tar mar tar mar. Aa ede chali.

0: क्लास शुरू करें?
1: रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

Ha ha ha.

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए
1: सुधी है शहर ला गमंग गमंग वाला अपने अपनी मुंडी कर दे ये ना उठ रहूँगा

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी

0: धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
1: लाइए।
2: रुको जरा, सबर करो।
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
4: हाय गाइस, दिस इज टाइगर श्रॉफ। एंजॉय फनेशिया रेडियो।
5: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फनेशिया, फनेशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: ਮੇਰੀ ਸਭਿਆ ਚੱਲੀਏ ਧੰਦਾ ਵਿਆਪਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦ ਧਰ ਤਲਵਾਰ ਲਿਪ ਸ਼ਿਪ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਨਕਾ ਬੁਖਾਰ
1: Wonderful 0.9 FM Funny Show. Funny Show. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment. Come on. This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti main na chahun.
7: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
10: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी
9: K2 ड्राइव मतलब
10: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है
9: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
10: 100%
7: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
12: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lossintravel.com.
13: तुमने फिर कार्ड यूज किया
14: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
13: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
14: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ
8: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
15: That magic removal हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
17: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
18: Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us here on this last day of the week. It was a short week, but it is Friday, the 29th of May, and we're going to get started with our program. But sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chaand sitare banai, zameen aasmaan banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम याली मदद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू

0: This part of our show is brought to you by IG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the U.S. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as for businesses. They are trusted, they're efficient, and they get you ready for the future. So call them 469-942-9888. Or you can visit agfintax.com, 469-942-9888. And that is agfintax.com. Plenty of guests on our show today, and we'll have them.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे relax, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: Wait, what?
8: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी family के decisions कोर्ट लेता है.
9: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में. The right way with estate planning.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
12: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Hey Maps, take me to my desi grocery store.
19: Calculating route, rerouting.
18: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
19: Location. destination upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
20: Kyun?
19: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
20: Achha. तो सीधा वही ले चलो
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
19: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
21: हाय डैलस दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

0: Picturized on Kajal and Shah Rukh Khan. That was Karan Arjun and the voices of Alka Yagnik and Kumar Shanu. I don't think I have played that song in years. So thank you for requesting that. Hope you all enjoyed it very much.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
5: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Shadi Byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं
10: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
11: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
14: हाँ
13: घर रिलोकेट करनी है
14: हाँ
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
14: हाँ भाई हाँ
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
16: तुमने फिर कार्ड यूज किया
13: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
16: पर
14: मैंने भी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया। कैसे मैनेज होगा सब?
16: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
17: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
18: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू और मेरे पहले शबनम जी करती हैं शो 7 से 10 के दरमियान. इट इज मंडे टू फ्राइडे दैट शी ब्रिंग्स अ अमेजिंग वेल राउंडेड शो फॉर ऑल ऑफ अस. सो अ बिग शाउट आउट टू शबनम जी हियर एंड टू एवरी अदर आरजे हु कम्स ऑन बोर्ड टू ट्राई एंड एंटरटेन यू एंड इन्फॉर्म यू एज वेल. तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं गपशप गली विथ मी टू राइट हियर. आज की तारीख है 29th of May और घड़ी में बजे हैं 10:08. लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ विल मेक श्योर इट इज वंडरफुल ब्यूटिफुल गॉर्जियस फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स नॉट एज गॉर्जियस आउटसाइड लेकिन ऑन एयर माहौल बिल्कुल मस्त रहने वाला है एज फ्राइडे शुड बी राइट.

Arijit Singh, they're singing that song for all of us here. और professionals की बात ही अलग होती है, you know. ये आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप पूरे सेटअप कर लो, लेकिन ये जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं ना, इनकी जो एक आवाज़ में जो एक खनक होती है ना, एंड द वे दे ब्लेंड इन टू द म्यूजिक इज एंटायरली डिफरेंट. आई मीन इट इज़ टू डू विद द साउंड सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल. लेकिन किसी किसी की ना आवाज़ बहुत स्टूडियो वाली आवाज़ होती है, कि बिल्कुल परफेक्ट होता है to go with the music and all, and that is where professionals are different. Just a definite disparity between common people and professionals. So yahan par ek aur professional ki baat karne wali hu, and it is to do with all the legal help you might be seeking in terms of your US permanent residency that you are seeking. To agar aap H1B F1 L1 ya kisi dusre aap non immigrant visa pe hain aur aap apna jo US permanent residency ke तरफ जो रास्ता है बिल्कुल सीधा सपाट इजी स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन सर्टनली हेल्प यू. और इसी के चलते मैं बताना चाहती हूँ दैट यू कैन सेंड एन ईमेल टू देम, info@seemamehtalawfirm.com. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइजेज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, PERM लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जानना हो जरूर ईमेल करें. फिर एक बार आप सभी को ईमेल एड्रेस बताना चाहती हूँ, info@seemamehtalawfirm.com. डू रिमेंबर दैट एंड डू रिमेंबर टू कॉल इन with your requests and dedication. And of course, we will have a conversation around a topic after 11 o'clock. To uske liye bhi to number lagega, 972-235-5555. This is Kapshap Kali with me.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस. हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर.
7: उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: घर की याद नहीं आई तुझे?
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
7: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
10: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
14: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
15: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
16: Tracks that put you on the right track.

आधे में तो हम यकीन ही नहीं करते ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट हम पूरा देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी पूरा. तो वेदर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपके लोकल वेदर के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज की हमारी शुरुआत हुई है 60s और 70s. जितना खूबसूरत ये लग रहा है सुनने में, मगी जब सिचुएशन हो जाता है ना तब उतना अच्छा लगता नहीं है. लेकिन डू नॉट कंप्लेन पीपल, क्योंकि 60s और 70s तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि आगे टेम्परेचर हॉट है आप लोगों के लिए. वेल, फ्राइडे विल बी टूडे इज द फर्स्ट ऑफ द 5 डेज इन द 90s, और हीट इंडेक्स हमारा आज का कुछ 94 सा फील करवाएगा हमें. एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, और इसी के चलते आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं. टेम्परेचर हमारे मिड 90s में होंगे, लेकिन हमें फील होगा क्लोज टू 100. दैट इज पर्टिकुलरली ऑन संडे दैट यू विल फील. टुमारो ऑल्सो अ मिड 90s फील दैट यू विल गेट, लेकिन जी हाँ, संडे को क्लोज टू 100 हीट इंडेक्स जो लेकर आएगा. वैसे टेम्परेचर कुछ मिड 90s में ही रहने वाला है, तो पानी शानी खूब से पिए, और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए पूरा जो सनस्क्रीन से लेकर ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, कैप एंड एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर टू डू. ऑलराइट, सम शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म चांसेस रिटर्न टू द फोरकास्ट बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक, लेकिन टेम्परेचर फिर भी हमारे स्टीमी रहेंगे. अपर 80s से लोअर 90s के बीच हमारा टेम्परेचर रहने वाला है. नाउ दैट बीइंग सेड, आज का हाई कुछ 93 के आसपास. Tomorrow's high will be around 94 with a low of 76. Sunday's high is exactly the same. Aur Monday ko hamara mid-90s mein temperature hoga for a high, and low will be around 78. Now, Monday will start the next month. To ye aakhri Friday jo hai mahine ka, puri tarah se enjoy karne ke vaade ke saath main. This is Gapshap Gali with me too.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
3: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
4: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
5: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hon. तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
12: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।
13: This is Gupshup Gali with me too on Funisha Radio 104.9 FM. आज फ्राइडे का माहौल सेट है और फ्राइडे के माहौल के लिए एक सिंपल सी चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फन यार. द बेस्ट डे टू रीफ्यूल योर सोल सॉर्ट ऑफ इज दिस डे लेडीज एंड जेंटलमैन. फ्राइडे का बहुत ही हसीन ये जो दिन है, वी आर गोना मेक श्योर दैट इट इज ऑल लाइवली फॉर ऑल ऑफ यू. जिसका कहने का मतलब बेसिकली सीधे सीधे ये है कि आज के दिन कोई गमगीन गाने ना सुनते हैं ना सुनवाते हैं. Now that being said, एक रेट्रो गाने की रिक्वेस्ट आई, 1950s के गाने की रिक्वेस्ट आई. हसन साहब की जो ये रिक्वेस्ट है वो मैं थोड़ा सा रीमेक फॉर्म में आपके लिए शेयर करने वाली हूँ. Now ये श्री 420 का ये ओरिजिनल गाना एक और गाने में इसको रीमेक करके इसे प्रेजेंट किया गया. Chain Kuli Ki Main Kuli. The magic is in you. That was the tagline for the movie. Isme Rahul Bose the. Aur Chain Kuli Ki Main Kuli. Does it remind you of a movie? मुझे बताइएगा. ये जो मंत्र था या क्या कहना चाहिए, ये जो मैजिकल वर्ड था, ये जो फ्रेज था, ये कौन सी फिल्म से था? इफ़ यू कैन टेल मी, वेल आई हैव अ गिव अवे फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप पहले हमारे लिसनर होते हैं टू कम ऑन एयर एंड टेल मी कि चेन कुली की मेन कुली ये कौन से फिल्म का एक्चुअली फ्रेज था, विच इज़ बेसिकली लाइक एब्राकाडाब्रा काइंड ऑफ थिंग. या एक ऐसा फ्रेज विच वुड इवोक सॉर्ट ऑफ गुड लक, ये कौन सी फिल्म का था? अगर आप मुझे बता पाते हैं तो मैं आपको देने वाली हूँ पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से एक बढ़िया सा गिव अवे. आलू कुलचे या छोले भटूरे, लेडीज एंड जेंटलमैन, दो लोकेशंस हैं, एलन या फ्रिस्को. किसी भी लोकेशन में जाएं और इसे आप ज़रूर रिडीम कर सकते हैं. तो मैं इन कॉलर को देखिए, लाइंस जल उठी हैं. मुझे अपनी जनता पर ना पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने पूछा. यू लाइव ऑन एयर. सबसे पहला सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ आपसे कि आपने पिछले एक महीने में जीता तो नहीं है पंचतारा से?
14: नहीं नहीं जीता अभी तक, नहीं जीता.
13: ओह परफेक्ट. व्हाट्स योर नेम?
14: श्रीकांत.
13: श्रीकांत, बताइए हमें कि क्या है, कौन सी फिल्म का ये एक्चुअली एक डायलॉग था, एक फ्रेज था, चेन कुली की मेन कुली की चेन?
14: डायलॉग या सॉन्ग बोल रहे आप?
13: नहीं, चेन कुली की मेन कुली ये एक फिल्म का नाम है जिससे मैं ये अगला गाना हसन साहब की जो रिक्वेस्ट है वो लगाने वाली हूँ. लेकिन चेन कुली की मेन कुली एक्चुअली एक फिल्म का फ्रेज है, फिल्म में यूज किया गया था, वहीं से पॉपुलराइज हुआ था
14: ये. इसमें सत्ते पे सत्ता में हुआ ना?
13: हाँ, देर यू गो, सी दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई वॉज लुकिंग फॉर. क्या बात है श्रीकांत, यू हैव जस्ट वन फॉर योर सेल्फ. आलू कुलचा या छोले भटूरे, डिपेंडिंग ऑन द डे दैट यू गो टू देयर लोकेशन, ईदर एलन लोकेशन और फ्रिस्को लोकेशन. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब पंचतारा रेस्टोरेंट इन योर हार्ट्स, और इंस्टाग्राम पे जाके भी जरूर फॉलो करें, और साथ में अपना पंजाब .hd3 एज वेल. कंग्रेचुलेशन टू यू श्रीकांत, होल्ड द लाइन एंड we will definitely get to you and get your details. All right,
14: thank you, thanks a lot.
13: Thank you so much. Shrikant ne jeet liya hai. Hasan sahab, ye raha aapka gana from Chain Kuli Ki Main Kuli that I'm going to play a remake version from that Shri 420 film.

And that was the remake of Ichak Dana, Bichak Dana, Dane Upar Dana from Chain Kuli Ki Main Kuli. Ye jo remix version aapne suna, hopefully Hasan saab jinhone request ki thi gaane ki, hopefully he enjoyed it. I know originals are always originals. Chain Kuli Ki Main Kuli, that was a phrase that was used in the film Satte Pe Satta. Amitabh Bachchan ka double role tha and there were so many other amazing actors along with Hema Malini. Aur ye jo kya kehna chahiye, एक नॉनसेंसिकल एक फ्रेज था, जस्ट लाइक एब्रा का डाब्रा आप समझ लें, ये ना वो भाइयों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए था, सत्ते पे सत्ता, जहाँ पे सात भाई थे और सात भाइयों को जब ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती थी तो वो कहते थे चेन कुली की मेन कुली की चेन. लेकिन मेरी आवाज में सुनने से तो नहीं काम बनेगा, लेट्स डू इट इन अमिताभ बच्चन्स डीप वॉइस. या और फिर टूट पड़ते थे भाई सारे. दैट वाज सत्ते पे सत्ता लेडीज एंड जेंटलमैन. और चेन कुली की मेन कुली की चेन जो है, यही कुछ जरूरत होगी सारे फीफा के जो टीम मेंबर्स हैं, सारे जो टीम्स जो खेल रहे हैं उनके मेंबर्स को, यानी कि प्लेयर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर. एंड यू नो व्हाट, हमारे डैलस में भी जो होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम June 14. दिस इज़ द फीफा सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि फाइनली AT&T स्टेडियम का नाम हटा के अब डैलस स्टेडियम करने वाले हैं. फॉर द टाइम बींग पीपल डोंट गेट अपसेट अबाउट इट, येस AT&T स्टेडियम विल बी नोन एज डैलस स्टेडियम एंड इट इज ए थिंग दैट द फीफा ऑर्गेनाइजेशन हैज यू नो डन फॉर ऑल द अदर स्टेडियम्स एज वेल, जिनका कुछ अगर स्पॉन्सर या कोई ब्रांड नेम अगर अटैच था उनके स्टेडियम से, वो हटाकर सबसे पॉपुलर सिटी, द नियरेस्ट पॉपुलर सिटी का नाम जोड़ा गया है स्टेडियम से. सो डैलस स्टेडियम इज वॉट इट विल बी नोन एज. एंड ड्यू टू दिस डिमांड NFL स्टेडियम्स विल हैव टू अंडरगो मेजर रेनोवेशंस टू फिट द फीफा गाइडलाइंस. बहुत सारे गाइडलाइंस में ये स्पॉन्सर लोगोज भी हटाया गया है. और ये कल डैलस स्टेडियम का जो नाम, जो ये ब्रांडिंग हो रही है अभी AT&T को हटाकर, वो कल से ये काम शुरू हुआ है. सो यू विल प्रॉबेबली सी टूडे दैट डैलस you know, sign going up. So this is for all of you to know. I thought I will keep you posted on whatever is happening in our city in terms of FIFA in this segment. Aapko pata hai na ki Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, LA, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, aur saath mein Seattle. 11 cities mein FIFA World Cup host ho raha hai in the US that I'm talking about. And there is, of course, the other two countries also, Mexico and Canada. और वहाँ पर भी सारे सिटीज़ में इस तरह के चेंजेस लाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सिटी है जो ये रूल नहीं फॉलो करेगा. एग्जेम्पशन मिल गया है उनको. वो कौन सी सिटी है, इस गाने के बाद बताती हूँ आपको. कीप लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. ये है गपशप गली विद मी टू.

0: That energy, I want to make sure that we all have, because the game is going to start. FIFA is going to start on June 11th or Dallas mein June 14th ko. And with the upcoming World Cup being the largest edition yet, 48 teams will be competing across 16 host cities. Jinmein se 11 cities jo hai US ki hongi aur unmein se ek hai Dallas ka. Aur Dallas ka jo AT&T Stadium hai, that is going to be the center of attraction. Aur AT&T ka naam badal ke ab Dallas rakha जा रहा है. वो AT&T का बैनर मेरे ख्याल से हाइड करके कवर करके अब अगले पूरे एक महीने तक के लिए जो रहने वाला है अंटिल जुलाई 19th आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टे एज डैलस स्टेडियम. दैट चेंज हैपनिंग एज वी स्पीक लेडीज एंड जेंटलमैन. सो यस देर आर 11 होस्टिंग सिटीज इन द US जिसमें से एक सिटी को एग्जेम्पशन मिला है टू नॉट चेंज द नेम एंड दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन The Atlanta Stadium, Mercedes-Benz Stadium that it is called. ये sponsor का नाम उसके साथ रहेगा क्योंकि ये exemption जो हुआ है reason है कि $1.6 billion का जो roof है. FIFA agreed to this accommodation after organizers discovered removing a major roof logo could cause structural damage. और ये बात उनको काफ़ी देर पहले बात पता चली इसलिए no change could be done and therefore that's the only place Mercedes-Benz Stadium in Atlanta which will carry the name of its sponsor. बाकी सब stadiums के नेम बदल दिए गए हैं including our very own AT&T Stadium taking a new name of Dallas Stadium. Keep listening ladies and gentlemen. This is Gupshup Gali.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था. सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है.
3: कौन सा.
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Documents ya parcel bhejni hai?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
14: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
13: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
14: वेट,
12: What?
4: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी family के decisions court लेता है.
15: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में the right way with estate planning.
4: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
16: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
17: Excuse me. It's called being loyal.
16: It's called being predictable.
17: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
16: And what's so special at Neon Cactus?
17: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
16: Not bad.
17: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
16: Okay, this I didn't expect from you.
17: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
18: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मीठू. और यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं बात करने वाली हूँ उस जगह की जो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत ना पड़े ये कहना शायद यू नो दैट इज़ व्हाट वी वुड लाइक, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है. एंड इट इज़ टू डू विद हेल्थ. चाहे वो अर्जेंट केयर वाली बात हो या तो फिर रेगुलर चेकअप्स एंड ऑल ऑफ दैट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ्स पीरियड, राइट. और ऐसे में हम ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम पूरा विश्वास हो, पूरा फेथ हो, ऐसी कोई जगह हम जाने की कोशिश करते हैं, राइट. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट इन टच विथ देम. दिस इज टेक्सास प्राइमरी केयर. फॉर 13 years टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर द एंटायर कम्युनिटी. अब इनका ब्रांड न्यू जो एक नाम और सेकेंड लोकेशन फ्रिस्को में, इंट्रोड्यूसिंग लूनॉक्सी मेडिकल. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्लेस फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, क्योंकि लूनॉक्सी मेडिकल आपके लिए एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटीज ले आती हैं, जैसे कि प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज एज वेल. सो याद रखिएगा, सातों दिन ये आपके लिए ओपन रहते हैं फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. जस्ट वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. एंड दिस इज लूनॉक्सी मेडिकल, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकेंड लोकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेक श्योर यू विजिट द प्लेस, गेट द वाइब ऑफ द प्लेस, टॉक टू द स्टाफ देयर इफ यू हैव क्वेश्चंस. दैट इज हाउ यू कैन पिक योर पिक फॉर योर हेल्थ केयर. ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, यू आर जस्ट एट द राइट स्पॉट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट एंड लोकल इन्फॉर्मेशन. ये है फन एशिया रेडियो 104.9 FM, जहाँ पे वो गाना लगाने वाली हूँ जो रीमेक है फ्रॉम द बीवी नंबर वन फिल्म. यार अपना चुनरी चुनरी सॉन्ग दैट स्टार्ड सुष्मिता सेन एंड ऑल्सो सलमान खान, लेकिन ये वाला विल सी वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर along with Pooja.

I love this remake. It was a wonderful remake from the film Hai Jawani To Ishq Hona Hai. ये मैंने पहली बार मेरे ख्याल से मेरे शो पे लगाया है. And Akshay and IP did the recreation of that iconic गाना from BV Number One. By the way, वो कल ही के दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म BV Number One in the year 1999. Just FYI, ladies and gentlemen, David Dhawan वापस लेकर आ रहे हैं एक वो धवन वाइब with his son Varun Dhawan, और इसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े. एंड दिस फिल्म इज रिलीजिंग एट द थिएटर्स ऑन June 5th. पूरी मसाला डेविड धवन स्टाइल फिल्म होने वाली है. और एक और फिल्म जो आने वाली है विथ माधुरी दीक्षित, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. इट इज माँ बहन डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा, और इसमें माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी. एंड इट इज गोइंग टू कम ऑन नेटफ्लिक्स. एंड हु एल्स इज देयर? इट इज धरना दुर्गा, जो कि एक कमाल के रील्स जो बनाती हैं यार, वही वो और साथ में तृप्ति दिमरी आर द टू डॉटर्स ऑफ माधुरी दीक्षित इन दिस फिल्म. और अगर इसका ट्रेलर देखा है आपने तो पूरी कॉमेडी से भरा है, लेकिन ये भी पता चलता है कि कुछ तो क्राइम किया है, कुछ नहीं एक्चुअली पता भी चल जाता है कि मर्डर हुआ है, या कोई किसने मारा है या ये नहीं पता, लेकिन मरा है कोई, ये ट्रेलर में समझ में आता है. सो दैट इज़ टू बी सीन. एंड ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी टॉक अबाउट हर, ओ गॉड, इट्स द 1990s रीलोडेड. तो 1990s का एक गाना तो आना ही था इसमें माधुरी दीक्षित का. एंड इट इज़ धक धक रीलोडेड दैट आई एम गोइंग टू प्ले. एक और रीमेक फॉर ऑल ऑफ यू टू एंजॉय राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM.

another remake created by Akshay and IP back to back. Akshay and IP in action. क्योंकि ये remakes हमने जो आपको सुनवाए. I hope you enjoyed it. और यहाँ पे ये गाना था धक धक reloaded from माँ बहन जो June 4th को Netflix पे आने वाली है starring माधुरी दीक्षित and तृप्ति दिमरी and धरना. So yes, we'll be waiting for that. लेकिन आपको बताऊँ 90s reloaded की जो अगर बात मैं अगर करूँ रीलोडेड की चलिए बात करती हूँ क्योंकि पेज थ्री ईटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्ट्रीट स्टाइल फूड इज रीलोडेड विद मॉडर्न फ्यूजन और वो आपको ना काफ़ी पसंद आएगा. एट लीस्ट आई कैन टेल यू मी एंड माई फ्रेंड्स लव्ड इट एंड इट इज ए प्लेस आई हाईली रेकमेंड क्योंकि खाने का स्वाद तो है ही प्रेजेंटेशन कमाल का है एम्बियंस कमाल का है और जब भी आप कभी कहीं बाहर खाने जाते हो ना ऑल दीज थिंग्स काउंट. आई मीन फॉर मी आई कैन टेल यू एंड जस्ट लाइक मी आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आउट देयर आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस लेकर आती हैं. वो जो बाहर जाके डाइन इन करने का एक्सपीरियंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट एट पेज थ्री ईटरी एट हब 121. डू रिमेंबर टू चेक आउट देयर वेबसाइट page3eatery.com. लेकिन मैं कहती हूँ यार सीधे जाओ और मेन्यू उतारो और सीधे चुनो जो लेना है आप लोगों को चूज करो वट एवर यू वॉन्ट टू हैव. ऑल राइट एक और आपको रीमेक पे ले जाने वाली हूँ. ये पासा पासा कार्ल वाइन का जो था फ्रेंच गुयाना के ये जो सिंगर हैं और कमाल का हिट हुआ था यार इनका ये गाना तीन साल मेरे ख्याल से दो तीन साल पहले आई थिंक एंड पीपल वर मेकिंग रील्स ऑन ए हुक स्टेप एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई थी. इनफैक्ट एशिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. अब काल वाइन का वही गाना नेहा कक्कर ने अपना एक टक्कर का उन्होंने बनाया है इंडियन वर्जन. लेट्स सी अलोंग विद टोनी कक्कर हिज ब्रदर. आई एम नॉट सो होपफुल आई डोंट वांट टू से दैट ऑन एयर बिकॉज कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ हम बोलना नहीं चाहते हैं ऑन एयर. लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे टोनी कक्कर का म्यूज़िक उतना पसंद नहीं आता है. आई मीन आई नो देर इज ए स्क्वाड ऑफ पीपल हु वुड बी विथ मी लेकिन देन देर इज़ अनदर टीम जो बिल्कुल नहीं अग्री करती होगी. तो मैं थोड़ा सा अपना जो है ये बैलेंस रखती हूँ और ये जो काल वाइन नेहा कक्कर और टोनी कक्कर का जो आज ही ये गाना एक रीमेक सॉर्ट ऑफ इंडियन वर्जन जो इसका आया है वो मैं सुनवाती हूँ और साथ ही साथ आई वुड लव टू प्ले दैट ओरिजिनल काल वाइन सॉन्ग ऑल्सो टू गिव यू अ फील ऑफ इट. तो थोड़ा सा काल वाइन का सुनते हैं एंड देन वील स्लिप इन टू द इंडियन वर्जन ऑफ इट. अब इंडियन वर्जन वेकेशंस का क्या होता है ये है हमारा टॉपिक एंड वील टॉक अबाउट दैट इन जस्ट बिट एंड हैव यू ऑल on air.

And that song which came out today, I thought I'll play it for you from a spin-off of Passa Passa by Carl Wine. And this is with Tony Kakkar. His imagination along with Neha Kakkar's voice that you just heard. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Gaane shaane to hum play karte rahenge. Lekin kuch vacation shikation ki baat ho jaye. Kyunki vacation ho ya staycation ho, hum vacation ke mood mein hamesha rehte hain. Aur vacation ka agenda hota hai alag-alag jagah jana. Mujhe aap logon se puchna hai ki jab aap apne family ke saath vacation pe jaate ho, to kya rehta hai point of contention? Everything isn't that always happy, rosy. झगड़े भी होते हैं यार, तो उन झगड़ों की जो वजह होती है वो जानना चाहती हूँ. मेजर पॉइंट क्या रहता है, मुद्दा क्या रहता है झगड़ों का व्हेन यू आर आउट ऑन अ वेकेशन, क्योंकि सबका अपना अपना एजेंडा होता है, राइट? हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन मेरी फैमिली का है टाइम. टाइम जो होता है ना, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि एक फैमिली मेंबर चाहेगा कि सुबह 7 बजे से या सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके निकल जाओ और अलग अलग जगहों को देखो. यार मैं नहीं हूँ ऐसी. मैं हूँ कि छुट्टी पे ना छुट्टी वाला मुझे टाइम चाहिए, मतलब कि थोड़ी सी लेट बैक, आराम से करेंगे, जाएंगे सब कुछ देखेंगे लेकिन आराम आराम से. ये वेकेशन मोड में है यार, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब बिल्कुल घड़ी की सुइयों के तरह बिल्कुल हम तेजी से चलते रहें बस कांटे को देखकर कि भाई अब 2 बजे यहाँ पहुँचना है और 2:30 बजे वो करना है और फिर 3 बजे वो. नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता. एक तो वो सुबह सुबह वो उठने वाला प्रोग्राम मेरा वेकेशन पे बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगता. दैट इरिटेट्स मी एट द वर्ड गो. तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या होता है, यही है हमारा मुद्दा आज का डिस्कशन का. क्योंकि वेकेशन हो या स्टेकेशन, छुट्टियों में ऐसे छोटी छोटी टकरार होती रहती हैं और इसी के चलते आप लोगों से बात करूंगी. सो गेट प्रिपेयर टू विथ योर फैमिली मुद्दास ऑन एयर. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है.

एक बहुत ही जरूरी सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि भाई अगर आप जब वेकेशन पे जाते हो तो क्या होता है आप लोगों के झगड़े का मुद्दा, क्योंकि सबके अलग अलग अपने एजेंडाज होते हैं, किसी को कुछ देखना खास होता है, किसी और को नहीं देखना होता है, और जल्दी उठने की जल्दी किसी को होती है तो किसी को आराम से सोने की जल्दी होती है, चिंता होती है. तो यस, वॉट इज दैट पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन योर फैमिली वेकेशन? वी वुड लव टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट. सो 9722355555, एक बढ़िया सा तगड़ा सा गिव अवे है आप लोगों के लिए. बनी रहे मेरे साथ इस गाने के साथ. वी गोइंग टू स्टिप इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और गपशप गली विथ मी टू विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक विथ ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो.

0: ज्यादा पेपर वर्क, ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न, या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर।
1: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
5: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।
6: अब क्योंकि आप फन एशिया रेडियो 104.9 FM सुन रहे हैं, तो यकीनन हम अपने गानों के साथ बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और यहाँ पे मैं लेकर आने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो कि है one of the fastest growing tax firm in the US, and it's AG FinTax. And this part of my show is brought to you by AG FinTax, financial and tax services for dynamic business owners that they offer. तो innovative financial services जो है आपकी untapped potential, चाहे वो आप as an individual approach करें या small business owner अगर आप हो, तो आपके लिए वाकई में बहुत फायदेमंद हो सकता है, because they use their decades of strategic tax planning and bookkeeping experience to enable small business owners succeed and build wealth by helping them save hundreds of thousands of dollars. So yes, get in touch with AG FinTax, and agfintax.com is the website. Anil Grandhi aur unki team hamesha ready rehti hai aapko help karne ke liye. To once again, agfintax.com website to bata diya, jahan par aapko phone number bhi mil jayega. Lekin chaliye ek bar aur main yaad dila deti hu, 4699429888, that's the number to call now. You must give us a call, क्योंकि हम वेकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई वेकेशन में आपका मुद्दा क्या होता है फैमिली के साथ आपके। हर किसी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, और उस एजेंडा में जब मिसमैच होता है तो होते हैं मुद्दे। वो मुद्दे छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ना, कि ये करना है ये नहीं करना है, वहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, किस वक्त पे जाना है, ये सारी चीज़ें ना, या क्या पैक करना है फॉर दैट मैटर, या कितना पैक करना है, ये कितने सारे पॉइंट ऑफ कंटेंशंस होते हैं हमारे वेकेशन प्लानिंग में, वही तो जानना चाहती हूँ। जरूर कॉल कीजिएगा, दिस इज 972-235-5555। गेट इन टच विद अस, आपकी आवाज जनता जान सुनना चाहती है, आपके मुद्दे जानना चाहती है। दिस इज गपशप गली विद मी टू।

0: All right, ladies and gentlemen, 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. देसी मंडी की तरफ से ये गिव अवे है आपका, आपके लिए. अगर आप मुझे बताते हैं कि आपके फैमिली में क्या झगड़े चलते हैं, नॉट द रेगुलर वंस दैट आई वांट टू नो, बस वो जो वेकेशन पे जाने के पहले और दौरान और उसके बाद जो झगड़े होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे होते हैं. दे आर सच क्यूट लिटल थिंग्स, जो क्यूट तब नहीं लगते हैं जब वो हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद सोचो तो लगता है, सच में बहुत हंसी आती है, बहुत फनी लगता है कि ऐसी बात पे भी हम झगड़ते हैं. जैसे मेरे लिए, मैंने कहा ना कि मेरी फैमिली के साथ मेरा जो पर्सनल एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो है कि भाई मुझे सुबह सुबह नहीं उठना होता है वेकेशन के टाइम पे. मुझे जीने दो यार, मुझे सोने दो, ये मेरा मंत्र होता है. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए.
1: हेलो,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: हाय, नाम विनोद.
0: विनोद, बताइए क्या चलता है आपकी फैमिली में, क्या एजेंडाज होती है, जानना चाहती हूँ मैं.
1: बॉटल कौन भरेगा पानी की?
0: आई नो, सीरियसली, ये मतलब हर पॉइंट पे, ये मतलब जाने से पहले, ट्रिप के दौरान, ये सारे लोगों का यही होता है कि ये बॉटल कौन भरेगा. बॉटल कौन भरेगा, उतरो अपना अपना बॉटल भरो. ये होता है नियम, है ना. थैंक यू विनोद, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आपका नाम हमने दर्ज कर लिया है अपनी लिस्ट पे, हम अनाउंस करने वाले इन अबाउट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम हियर, तो चिपक के सुनते रहे, ठीक है. थैंक यू जी. तो ये बॉटल कौन भरेगा, ये कंटेंशन तो होता ही है. साथ में वो ना, अगर रोड ट्रिप पे निकल रहे हो पर्टिकुलरली, तो ये एक सच में एक बड़ा वाला पॉइंट होता है कि बॉटल कौन भरेगा. और उसके साथ वो लगेज जो ओवरलोड हो जाता है ना, क्योंकि रोड ट्रिप पे जा रहे हो, तो उसकी इतनी सारी चीज़ें आप रखते हो, ऐसे भरते हो अपना कार कि लगता है कि मतलब रास्ते में और कुछ कभी मिलने ही नहीं वाला है. ये ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई वुड अंडरस्टैंड इफ माई फैमिली कम्स ऑन एयर एंड टॉक्स अबाउट इट. मुझे ना ऐसे जब ऐसे रोड ट्रिप पे जाती हूँ तो लगता है ये भी रख लेती हूँ, वो भी रख लेती हूँ. अब अपनी तो गाड़ी है, पूरा जगह तो अपनी ही है, तो भर लो जितना भरना है. तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी मेरी वाली प्रॉब्लम है, आई नीड टू कन्फेस हियर. 972-235-5555, यहाँ आपके ट्रैवल ट्रॉमास के बारे में बात करना चाहती हूँ. यहाँ पर यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM, ये है गपशप गली. वी मीट यू, लगता है विनोद आपके और मेरे अलावा ये प्रॉब्लम किसी और की है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई या तो शेयर नहीं करना चाहते हैं यार, कि मतलब हमारे घर के झगड़े घर के चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए. यार ये वो क्यूट वाले झगड़े हैं जिनके बारे में सोच के बाद में हंसी आती है, तो वो वाले झगड़े हम आपसे जानना चाहते हैं. सीरियसली यार, बताओ कि क्या है, क्या विनोद और मैं ही हैं ऐसे दो लोग हमारी पूरी जनता में जिन्हें ऐसे ट्रैवल रिलेटेड ऐसे मुद्दे उठते हैं फैमिली में जब झगड़े होते हैं. यार बताइएगा ज़रूर, 972-235-5555. तब तक एक गाना हो जाए और उसके बाद फिर लेते हैं कॉल्स, नहीं तो विनोद तो है ही हमारे पास. चलिए एक और कॉल आया, छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं यहाँ पे. ओके, काफ़ी सारी लाइंस चल रही हैं, अभी एक ले लेती हूँ, बाकी कॉल्स मैं गाने के बाद लेती हूँ. अच्छा, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय.
0: Yes.
1: As far as the water bottle thing is concerned, I think Vinod and you are the only two people I have heard of. उससे बड़ी लड़ाई होती है फोटोज पे.
0: हाँ.
1: ये फोटो ठीक नहीं आएगी, ये फोटो इंस्टाग्रामेबल नहीं है.
0: अरे ये तो पूछो नहीं, ये आपने सबकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है मेरे ख्याल से. एंड दिस इज प्राइमरीली हस्बैंड्स बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड विथ, राइट? क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी वाइफ्स की होती है जनरली स्पीकिंग. हाँ, सारी जो वाइफ्स जो ऐसा,
1: आई एग्री, कुछ 100-200 फोटोज के बाद मे बी एक दो अच्छी आती है, और फिर हस्बैंड के साथ तो रेयरली एक दो पिक्चर्स होते हैं, वो भी कभी हस्बैंड का आंखें बंद होती हैं, कभी वाइफ की आंखें बंद होती हैं.
0: सर, आपने ना बिल्कुल सही जगह पे बिल्कुल पॉइंट किया है. यहाँ पे आपका नाम क्या है?
1: विपुल.
0: विपुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और सीरियसली मुझे ना पतियों से ये भी पूछना है कि यार आप लोग मतलब 10,000 फोटोग्राफ्स ले सकते हो, क्योंकि दैट इज व्हाट योर वाइफ्स वांट, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से, और पसंद नहीं आए तो पिक्चर्स, लेकिन आप लोग इतने खराब पिक्चर्स कैसे ले पाते हो यार? हाउ डू यू मैनेज टू टेक बैड पिक्चर्स ऑफ अस?
1: हाँ,
0: Once again, 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. एक कॉल ले लूँ क्या? बड़ी लालच हो रही है. नहीं, लेकिन जो म्यूजिक सुनना अभी चाहते हैं उनको भी तो हम तृप्त करते चलें, क्योंकि फनीजा रेडियो 104.9 FM है, जो सबका स्टेशन है. एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: दिस इज गपशप गली विथ मी टू और गपशप हमारी चल रही है अबाउट वेकेशन ट्रॉमाज. और वो वेकेशन ट्रॉमाज होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर जो झगड़ा हो जाता है ना, और वो छोटी छोटी बातें हो सकती है कि बॉटल रोड ट्रिप अगर हो तो बॉटल कौन भरेगा और क्यों नहीं भरा, इन सब पे मुद्दा. विपुल ने कहा कि भाई वो फोटोग्राफ्स 1000 फोटो में से वो एक आधी जो अच्छी आएंगी एंड देन इट इज डेफिनेटली कि एक भी फोटोग्राफ तुम अच्छा नहीं ले सकते हो, ऐसे कैसे करते हो, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ एंड देन ऑल ऑफ दैट यू नो इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स जब नहीं आए तो जो होता है. चलिए रीटा को मैं ऑन एयर लेने वाली हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग द लाइन. रीटा बताइए क्या चलता है वेकेशन पे.
1: ओके वेकेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो माय फैमिली दे ऑल वांट बीच वेकेशन.
0: हाँ
1: एंड बीच वेकेशन तो ठीक है पर ड्यूरिंग द वेकेशन देन kids and my daughter they want to be in the sun and I don't want to be in the sun so wo hota hai ki mama nahi thodi der aur bas usi mein wo ye log pani se bahar nikalte nahi hai and then I say okay now next time I'm not coming with you guys for vacation.
0: I can so understand that wo dhoop mein dimag garam hone lagta hai uske baad hamara the moms.
1: Oh my god like you know, मैं कहती हूँ कि ये पानी से और इतनी धूप कैसे आप लोग ले लेते हैं and I don't know.
0: यार,
1: I'm not going to go into that.
0: I know, Rita, I absolutely hear you. But when I think about our childhood days, na, our moms used to say exactly the same to us कि क्या तुम लोग को धूप बारिश ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खेलने चले जाते हो और ये सब चीजों का कुछ ख्याल नहीं रहता है तुम लोग को, all of that. Now our kids are doing that exactly that with us. It is called karma.
1: And on top of that, इनके TikToks. You know, मामा अच्छा ये टिकटॉक बनाना है हमने.
0: Oh God.
1: ये ठीक नहीं है, एक दफा और, एक दफा और. मैंने कहा ओ माय गॉड, यू नो
0: एक बार और. रीटा थैंक यू वेरी मच. तो रीटा को कहीं भी ले जाओ लेकिन प्लीज बीच वेकेशन नहीं. Thank you, Rita. Thank you. I hear you. Thank you for your call. आपका नाम रीटा मैंने लिख लिया अपने लिस्ट पे. No beach vacation for Rita. You are live on air.
2: Yes, मेरा नाम परवीन है.
0: हाँ जी.
2: मैं और मेरे हस्बैंड जब वेकेशन पे जाते हैं तो वो मॉर्निंग पर्सन है और मैं नाइट, मतलब मैं देर से उठना देर से सोना और स्पेशली जब विद ब्रेकफास्ट होती है.
0: हाँ.
2: तो जब वो नाश्ता करके आते हैं फिर बोलते उठ जा अभी बस वो बंद हो रहा है, नाश्ता बंद हो रहा है, बाहर मैंने नहीं खेला हूँ. और फिर जब बाहर जैसे डिज्नी वाले कहीं तो मैं घूमते घूमते ना बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके लिए बोलते फिर तू कचरा ढूंढने बैठ जाती है. वेकेशन को एंजॉय कर, देख सब राइट्स ले. तो उसमें हम दोनों लड़ते रहते हैं.
0: अल्टीमेटली सभी होता है, आपके हिसाब से भी होता है और उनके हिसाब से भी होता है. लेकिन ये एक चीज है मेरे ख्याल से, मैनी विल अग्री टू यू परवीन जी कि ये सुबह उठना ना उठना एक के बाद एक चीज है.
2: जब वेकेशन पे आए तो आप यू एंजॉय ना, आराम से सो, आराम से उठ के नाश्ता करो.
0: मेरा भी यही
2: बनना है. नाश्ता बंद हो रहा है बस 5 मिनट है जल्दी से. तो उसमें मुझे घबराहट होती है कि क्या, मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ. मगर फिर भी वेकेशन फिर जब उठ जाती हूँ जब अच्छा लगता है फिर मुझे अच्छा.
0: व्हेन वी आर अप वी आर अप. हाँ, जब उठ गए तो उठ गए और कमाल कर देंगे. लेकिन वो उठने तक जो प्रॉब्लम
2: है पूरा दिन आपके हाथ में.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और चलिए अगला कॉल ड्रॉप हो गया है. बट थैंक यू परवीन जी, आपका नाम भी मेरी लिस्ट पे है. एंड एक्चुअली जो जल्दी उठने वाले होते हैं ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, खुद जल्दी से तैयार हो जाएंगे और अगर आप तब सोए हुए हो ना उसके बाद वो जो कहना चाहते हैं देर हो रही है वो जो मंत्र जपना शुरू करते हैं ना, इट्स हाईली इरिटेटिंग. यू आर लाइव ऑन एयर, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो. कैन यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो. I cannot hear you very well until you turn down your volume, please. All right, let's hear it from you.
3: Hello.
0: Hi. क्या नाम है आपका?
3: विनोद.
0: विनोद, आप वही विनोद है जिन्होंने हमें बॉटल के लिए कॉल किया था?
3: नहीं, बॉटल वाला नहीं है, दूसरा है.
0: ये बाटली वाले नहीं है तो कौन है?
3: बाटली वाले भी नहीं है, बॉटल वाले भी नहीं है.
0: अच्छा, तो बताइए आपका क्या रहता है मुद्दा?
3: मुद्दा सभी का रहता है
0: जी,
3: कि यदि मान लो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी ने भी बोला होता है.
0: हाँ.
3: कि भाई ये चीज ले लेना.
0: हाँ.
3: क्योंकि जरूरत पड़ेगी,
0: हाँ,
3: लेकिन जब डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं वो नहीं मिलती, और वो जो लड़ाई झगड़ा होता है
0: बोला था,
3: हाँ. मैंने बोला था, आपने नहीं सुना?
0: I know this is such a common thing. बोला था नहीं लिया, तुमने कहा था कि मतलब लगेज बहुत ज्यादा हो गया है, देखा अब जरूरत पड़ गई ना.
3: जरूरत पड़ गई ना.
0: ये ताना इज मेंट फॉर एवरी हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड, ये तो मतलब एक है ही कॉमन चीज. वेल थैंक यू फॉर सो मच फॉर शेयरिंग. एंड विनोद, व्हाट इज योर लास्ट नेम सो दैट आई एम एबल टू डिफरेंशिएट? विनोद पटेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. एंड अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, हमारे विनर के एक और कॉल ले लूँ जल्दी से. हाँ, यू आर लाइव ऑन एयर, जल्दी से बताइए आपके फैमिली का वेकेशन जो होता है ट्रैवल ट्रॉमा, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू.
4: हाँ नीतू जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, टॉपिक आपने बहुत अच्छा पकड़ा
0: है ना, बिल्कुल ऐसा बर्निंग टॉपिक है कि नहीं बताइए.
4: हाँ ये तो है. वैसे ये जो जो आपने जो टॉपिक निकाला है, इसको जो कहते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट होता है ये, वो उसको एक्चुअली प्यार मोहब्बत कहते हैं.
0: हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि मतलब ये ना हो तो मजा नहीं आया ट्रैवल में.
4: हाँ ये अब मेरे साथ स्टोरी ये होती है कि कहीं प्रोग्राम बने ना कोई, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, नहीं चला रहा, मैं ये नहीं करूंगी, वो सब चलता है. एक मजे की स्टोरी है, वो याद है कि हम लोग यहाँ से ह्यूस्टन गए थे, ह्यूस्टन से सैन एंटोनियो जाना था ना.
0: हाँ.
4: तो मॉर्निंग में मैकडॉनल्ड में ब्रेकफास्ट के लिए गए.
0: हाँ.
4: ब्रेकफास्ट किया तो मेरी जो छोटी बेटी थी ना, वो तकरीबन 5-7 साल की थी ना.
0: हाँ.
4: तो बच्चों को पता है ना, वो मिल्क और वो बटर और छोटे छोटे कार्टून बहुत अच्छे लगते
0: हैं. हाँ, हाँ.
4: उसने कप कप में डाल दिया.
0: अच्छा.
4: तो वाइफ ने ब्रेकफास्ट के बाद वहां से जब वो रेस्टरूम यूज करने गए, उसने कप लेके गाड़ी में बैठी.
0: हाँ.
4: तो उसने गाड़ी में देखा कि उसके पास ये बटर वगैरह ये वो सब है ना. तो बेगम ने क्या किया कि अपनी विंडो फ्रंट पे बैठी थी, विंडो खोली, वो कप पकड़ा.
0: हाँ.
4: उसमें से जो कप है उसमें बटर वगैरह था, वो निकाल के सारे फेंक दिए.
0: अच्छा. फिर जो रोना शुरू किया.
4: हाँ. तो यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट जो राइड जो है वो बिल्कुल खामोश, जैसे एक पिन ड्रॉप ही नहीं है. फिर मुझे कुछ मस्ती सूझी ना.
0: हाँ.
4: मैंने कहा लुक योर मॉम डेड, तो मेरी छोटी बेटी ने कहा ओडीसी डेड.
0: हाँ.
4: शी मेड द बटरफ्लाई.
0: हाउ कूल दैट वाज.
4: तो उसके बाद फिर से हंसने लगे.
0: क्या बात.
4: ये तो जो वेकेशन में जाना एक्चुअली ये क्या प्यार मोहब्बत को बढ़ाता है और कुछ
0: बिल्कुल,
4: नहीं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और यही तो है जो किससे कहानियां रहती हैं जो शेयर की जाती हैं उसके बाद, है ना. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.
4: एक बार वो गए थे
0: सर जी. आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कट योर कॉल हियर, क्योंकि हम ज्यादा ऐसे जो किस्से हमें पता है कि एक बार हमारे जो पिटारा खुल जाता है तो इतने सारे किस्से याद आते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. बट यस,
5: दिल चाहता है
0: कि ऐसे ट्रैवल प्लान्स हमारे बनते रहें, हमारे ऐसे प्यार वाले झगड़े होते रहें, हमारे किस्से कहानियां ट्रैवल लॉग में बढ़ते रहें. This is Gapshup Gali with me too, and my winner for today is Rita. Rita, give me a call here. आपने देसी मंडी से जीता है amazing grocery hamper. It is in Louisville, the biggest grocery store in DFW.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
7: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
9: हर खुशी में आपके साथ अन्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
11: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
10: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
16: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
18: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
16: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
20: एंड इट इज़ 104.9 FM Fun Asia Radio पे गपशप गली और मेरा नाम है मीठू. आप लोगों के साथ 12:30 बजे तक हूँ और इस आखिरी सेगमेंट में देर इज़ प्लेंटी टू टॉक अबाउट लेडीज एंड जेंटलमैन. एक तो क्या है ना कि मैं रीटा का फ़ोन एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले सेगमेंट में देसी मंडी से जीता. आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स एंड इट इज़ जस्ट फेयर टू वेट फॉर हर लिटिल बिट मोर. अगर उन्होंने ये मैसेज नहीं सुना हो तो ज़रूर कॉल करें क्योंकि आपने जीता है यार. हमारा जो ट्रैवल ट्रामा के बारे में बात हो रही थी हमारे पिछले सेगमेंट में ऑल इन फन, आपने जो नो बीच वेकेशन के बारे में कहा तो आप ही है मेरी विनर. आप जरूर कॉल कीजिएगा रीटा एंड यू हैव वन फ्रॉम देसी मंडी द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन डैलस. और अगर मुझे अगले 5 मिनट में इस गाने के खत्म होने तक लेट्स से रीटा से कॉल नहीं मिलता है तो इंस्टेंट हम आप लोगों के लिए एक गिव अवे रखने वाले हैं. तो उस गिव अवे के लिए आप तैयार हो जाए फ्रॉम देसी मंडीज. लेट्स वेट फॉर रीटा वेरी पेशेंटली एंड देन गो ऑन टू इट. इस सेगमेंट में मैं कुछ गाने ऐसे प्ले करती हूँ जो आज के दिन या इस टाइम फ्रेम में रिलीज हुई हो. तो शुरू करना चाहती हूँ उस फिल्म से जो आज के दिन रिलीज हुआ था इन द ईयर 1998 जहाँ पे काजोल का डबल रोल था. क्रिटिक्स अप्लॉडेड हर फॉर अमेजिंग एक्टिंग लेकिन उसके साथ विलेन को भी उतनी ही तारीफ मिली. हु वॉज अ न्यू कमर देन एंड उन्होंने जो गोकुल पंडित का किरदार निभाया था रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो कैरेक्टर का सुन के. एंड द नेम ऑफ द फिल्म दुश्मन जिसका ये गाना बहुत अमेजिंग है. लिसन टू द पियानो बीट.

0: A film that released on this day, it is 29th of May 1998, ke din Dushman release hui thi, directed by Tanuja Chandra. For those who probably might not know, ye Anupama Chopra hai na, Vidhu Vinod Chopra ki wife hai, aur film critic hai, amazing journalist, film journalist that she is, wo unki sister hai, Tanuja Chandra. Aur Tanuja Chandra ki is film ke liye screenplay likha tha Mahesh Bhatt ne, aur Sanjay Dutt एंड काजोल थे और विलेन कौन थे ये मुझे बता दीजिए. अब क्या है ना कि देसी मंडी का गिव अवे आपके लिए, अगर आपने वो जो कैरेक्टर गोकुल पंडित का निभाया था जिन्होंने, अगर उनका नाम बता दें, दिस इंस्टेंट गिव अवे फॉर ऑल ऑफ यू देसी मंडी की तरफ से मैं आपको देना चाहती हूँ दैट बिगेस्ट ग्रोसरी हैम्पर दैट यू विल बी रियली हैप्पी अबाउट. क्योंकि ये देखिए ना, बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर है तो हैम्पर में भी बहुत अच्छी अच्छी कमाल की जरूरी चीजें होंगी आपके लिए, विद एसेंशियल ग्रोसरी आइटम्स दैट इट विल हैव फॉर यू. जरूर कॉल करिए 972-235-5555. ये जो गाना सुना, इस फिल्म के जो विलेन थे गोकुल पंडित, उनका नाम क्या है? लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. व्हाट्स योर नेम?
1: हाय, इट्स श्रद्धा.
0: श्रद्धा, तो बताइए गोकुल पंडित का किरदार इस फिल्म में किसने किया था? हु डिड इट एंड हाउ अमेजिंग ही डिड इट?
1: इट वाज आशुतोष राणा.
0: Of course, my goodness, he was a newcomer then. और क्या किया था उन्होंने एक्टिंग? आपने ये फिल्म देखी है?
1: हाँ जी, मैंने देखी और काफी स्कैरी थे उस रोल में.
0: बहुत ज्यादा, मतलब अगर किसी विलन को यू नो ऑडियंस हेट करने लगे तो दैट इज ए जॉब वेल डन, राइट?
1: That is so true and it is so so scary to even watch him play that.
0: Yes.
1: कि मुझे अच्छे से याद है जब देखा था.
0: हाँ.
1: तो काफी दिनों तक वो उनका चेहरा जो चिल्लाते हैं एंड ऑल दैट.
0: आई नो, इट वाज जस्ट स्कैरी, बहुत ज्यादा स्कैरी था. थैंक यू श्रद्धा फॉर योर कॉल. प्लीज होल्ड द लाइन. आपको देसी मंडी की तरफ से जबरदस्त ग्रोसरी हैम्पर मिला है. तो जब आपने ये फिल्म देखी होगी तब आपको पता था कि आशुतोष राणा के कारण आपको देसी मंडी से इनाम मिलने वाला है.
1: जी नहीं, तभी नहीं पता था पर अभी जानकर काफी खुशी हुई. थैंक यू.
0: एब्सोल्युटली माय प्लेजर. श्रद्धा प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी. ऑलराइट, एंड अनदर सॉन्ग फॉर यू. बातचीत करके आती हूँ एंड फिर एक और गिव अवे आप लोगों के लिए, तैयार हो जाइए उसके लिए. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. ये गाना जो मैं लगाने चली थी वो गाना तो वो है ही नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट मस्ट गो ऑन.

0: लिसन, आप लोगों के ऑन एयर आने का वक्त फिर एक बार आ चुका है एंड दिस इज कॉलिंग ऑल नॉन वेजिटेरियंस. क्या आपके फ्रेंड अगर नॉन वेजिटेरियन है, ये एक आप लोगों के लिए एक तो चैलेंज है, इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज बाय सैल्स नैशविल हॉट चिकन, ये एक चैलेंज है. लेकिन फिलहाल जो मैं चैलेंज दे रही हूँ आप लोगों को, इसका सीधा नतीजा ये होगा कि आपको एक फ्री 3 जंबो टेंडर्स मिलने वाले हैं. तो जरूर कॉल कीजिए, दिस इज इन रिचर्डसन बाय द वे, सैल्स नैशविल हॉट चिकन. आपके नाम करेंगे 3 जंबो टेंडर्स अगर आपने मुझे सारे नाम बता दिए, क्योंकि ये सेगमेंट होता है एक ऐसा सेगमेंट जहां पर मैं आज के दिन या इस टाइम फ्रेम में रिलीज हुई कुछ फिल्मों के अच्छे अच्छे गाने लगाने का बहाना लेकर आती हूँ. तो एक और बहुत अच्छा सा गाना लगाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी कश्मकश में हूँ. आई एम इन अ बिट ऑफ अ डिलेमा हियर, और वो डिलेमा ये है कि कौन सा गाना लगाऊं, क्योंकि सारे ही गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं. तो सबसे पहला वाला काम तो ये है कि सॉर्ट आउट करना कि क्या हैं इस फिल्म के गाने, तो ये आपको बताना है. सो गिव मी अ कॉल, इट्स अ सुपर डुपर पॉपुलर फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसीलिए फोन बिल्कुल रेडी होना चाहिए हमारे नंबर के साथ 9722355555. नाउ लिसन, मिस्टर इंडिया इस फिल्म के बारे में कौन नहीं जानता. जो नहीं जानता वो तो आज ही जान ले कि भाई वीकेंड का मैंने आपको टास्क दे दिया कि ये फिल्म जरूर देखे. अनिल कपूर, श्रीदेवी एंड अमरीश पुरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हु कैन फॉरगेट दैट, राइट. तो इस फिल्म का जो कि आज ही के दिन रिलीज हुआ था इन द ईयर 1987, 29th of May 1987, इस फिल्म के सारे गाने बता दीजिए, ऑल द सॉन्ग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड उनमें से आपका एक फेवरेट प्ले करेंगे, लेकिन आपको ऑन एयर आके वो सारे गानों के नाम बताने हैं. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. सो आई एम गोइंग टू काउंट हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. ऑल राइट, देर आर 5 सॉन्ग्स दैट आई वॉन्ट यू टू मैंशन हियर इन ऑर्डर टू विन फ्रॉम सैल्स नैशविल हॉट चिकन, और तभी तो गाना भी प्ले होगा फिर. तो ज़रूर बताएं मुझे कॉल करके 9722355555. अब ये है ना कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इतनी मेहनत की है इसके पीछे, जावेद अख्तर साहब ने इतनी मेहनत की है गाने लिखने में, तो मेहनत सार्थक होना चाहिए ना, गाने पता होना चाहिए आपको सारे. सो यस, टेल मी द सॉन्ग्स दैट यू नो फ्रॉम द फिल्म मिस्टर इंडिया. आई नीड ऑल द सॉन्ग्स इन ऑर्डर फॉर यू टू विन. यू लाइव ऑन एयर.
1: Hi, Aniket here.
0: Aniket, go for it.
1: So, the famous song tha uska Hawa Hawaii.
0: Got it, one.
1: Then, I think there is one more song that is Karte Hum Pyar, I think Mr. India se.
0: Bilkul, two.
1: That was a song.
0: Yeah.
1: And I think there is one more, I think 3-4 songs were there.
0: Huh.
1: Kaate Nahi Katte.
0: Bilkul sahi.
1: I think so.
0: Yes, bilkul correct hai.
1: One, if I don't remember, what was the song? जिंदगी की यही रात है.
0: रीत है, बिल्कुल बिल्कुल सही. और पांचवा एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स, यू रिमेम्बर?
1: आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली.
0: ओके, जो शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने किया था. मैंने आपको एक्चुअली क्लू दे दिया, इसका पूरा पूरा क्लू दे दिया. यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू टेक योर आंसर बिकॉज दैट्स अ पैरोडी सॉन्ग मेड ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट सॉन्ग्स एक्चुअली. तो वो पैरोडी गाना शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया था. सो यस, यू आर माई विनर अनिकेत, कंग्रेचुलेशंस. आपको सैल्स नैशविल हॉट चिकन की तरफ से 3 जंबो टेंडर्स मिलने वाला है, और ये 3 आप अकेले खाने वाले हो कि किसी के साथ शेयर करने वाले हो?
1: I will share it by with my wife and son.
0: क्या बात है, ये तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन है, एक एक सबके नाम है ना.
1: Yes.
0: Congratulations to you. Please hold the line and I am going to take all your information off air. And which is your favorite song from this film? Tell me.
1: Hawa Hawaii.
0: हवा हवाई, वी वी वी वी वी, चलो वही लगाते हैं आप.
1: बिकॉज इसके साथ कुछ यादें जुड़ी है, जब मी एंड माय वाइफ वर डेटिंग, शी टोल्ड मी शी यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, एंड व्हेन शी वाज अ किड she had performed this song. So whenever we have a get together, I definitely ask her to perform on this song.
0: How amazing. What's the name of your wife?
1: आशा.
0: आशा और अनिकेत के लिए ये अगला गाना, लेट्स प्ले इट फॉर यू एंड प्लीज होल्ड द लाइन, विल टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन off air.

0: ये सब मस्ती मजा हमारी चलती रहे. आफ्टर ऑल इट इज फ्राइडे लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट फ्राइडे इज जस्ट अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन यू नो, केयरफुल रहना भी जरूरी है, और केयरफुल रहने के बावजूद भी कभी कभी कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं विच वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर. और इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अटर्नी उमर ख्वाजा को जरूर याद रखें. इफ देर इज एन एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल इंसिडेंट या फिर वर्क प्लेस इंजरी, अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम कैन हेल्प यू. नंबर है 4693005046, एंड ऑल्सो attorneyomar.com हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स. और याद रखें कि द ग्रैंडेस्ट प्रॉमिस दैट दे ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू इट इज द फैक्ट दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन द केस. जिसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कॉम्पनसेशन जब तक आपको मिल नहीं जाता है आपको पे करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट्स उमर ख्वाजा, लेडीज एंड जेंटलमैन, attorneyomar.com इज द वेबसाइट. और इसके साथ साथ मेरा हफ्ते भर के लिए जो कार्यक्रम है वो खत्म होता है यहीं पर, और आप लोगों से मुलाकात होगी सीधे अगले महीने यानी कि 1st of June, विच इज मंडे. This is RJ Meetu signing off for the day.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
15: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Spreading love and understanding with best music. 104.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent, and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
4: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता है?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना. जस्ट लाइक दैट, व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स. दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स. साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट. तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com. ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स. प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
15: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
14: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
15: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
14: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
15: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
14: नंबर बोल जल्दी.
15: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
16: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
17: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

A very good afternoon, my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ RJ Simi. जी हाँ, usually तो मेरा show जो है Monday to Thursday 12:30 से 2:30 बजे तक का होता है, लेकिन मुझे आज मौका मिल गया है आपके साथ एक और दिन गुजारने का, आपके साथ रूबरू होने का. तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने की बात करें तो आज तो शुरू हो रहा है वीकेंड फ्राइडे ये. जी हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या देखा जाए इस वीकेंड पे, तो बहुत सारे अमेजिंग शोज आ रहे हैं, और आज का शो भी इसी बारे में है. जी हाँ, वीकेंड वॉच लिस्ट स्पेशल. आज हम आपको बताएंगे नए नए रिलीजेस के बारे में जो कि OTT पे आए हुए हैं, तो आप मस्त नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं या फिर प्राइम वीडियो एंड ढिक चैक इंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे थ्रिलर्स के बारे में बताऊंगी. कोर्टरूम ड्रामा है इस वीकेंड पे जो नया नया आ रहा है. रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, हर मूड के लिए सीरीज या मूवीज है. और वीकेंड वॉचलिस्ट स्पेशल के दौरान मैं आपसे कुछ गिव अवेज भी लेके आई हूँ आपके लिए, जो आप इंजॉय करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उनको जीतने के बाद आपको मिलेंगे अमेजिंग गिफ्ट्स. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनी शो रेडियो.

पर सुनने पाए आप ना कोई फनेशिया के सिवा। जी हाँ, मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम। और आज का जो हमारा शो है ना, वो डेडिकेटेड है वीकेंड वॉच लिस्ट स्पेशल के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, प्राइम वीडियो पे रिलीज होने वाला है एक मूवी सिस्टम। इसमें दो पावर वुमेन है, सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका, मतलब नॉर्थ और साउथ की दो पावरफुल हीरोइंस हैं इसमें। ये एक कोर्टरूम थ्रिलर है जिसमें पॉलिटिक्स है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फैमिली एंगल भी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और इस वीक एक और इंटरेस्टिंग मूवी रिलीज हो रही है ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है माँ बहन। नहीं नहीं जी, कोई गाली वाली नहीं है, ये बेसिकली माँ और दो बहनों की कहानी है, इसलिए इसका नाम माँ बहन है। और इसमें ना कोई बड़ा सा कांड हो जाता है, जितना मुझे ट्रेलर और टीजर देख के समझ आया कि कांड हो जाता है एक माँ से, जिसको माधुरी दीक्षित प्ले कर रही हैं माँ का रोल, और दो बहनें हैं उनकी बेटियाँ जो कि प्ले कर रही हैं, तृप्ति दिमरी और धारणा। धारणा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, और ये उनका पहला डेब्यू मूवी है। एंड यू नो इंटायर सोशल मीडिया इज़ क्वाइट एक्साइटेड अबाउट हर डेब्यू इन दिस मूवी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी हैं, रवि किशन जी। तो मतलब मूवी कुछ धमाकेदार तो होने ही वाली है, तो यू नो आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर वीकेंड वॉचलिस्ट स्पेशल, देन कॉल अस एट 972-235-5555 पे।

ये जो लिरिक्स है ना, तू ही मेरी शब है सुबह है, ये ना मुझे ग्रॉसरी स्टोर के लिए गाना चाहिए। जी हाँ, मतलब इतनी बार ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ता है और इतनी आफत आती है, पर जाना ही पड़ता है, नेसेसिटी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रॉसरी स्टोर जाना फन हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकता है और आपको मज़ा आ सकता है वहाँ पे जाके शॉपिंग करने में, और खाने पीने को भी मिल सकता है आपको लाइव गर्मा गर्म, तो आप जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहेंगे। और मैं ऐसे लोकेशन भी बता रही हूँ, देसी मंडी, जो कि है टाउन का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर। जी हाँ, ये है लुइसविल में, और यहाँ पे आपको मिलता है सब कुछ। मतलब अगर आपको स्पाइसेस चाहिए, स्वीट्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, हलाल मीट चाहिए, या फिर गर्मा गर्म खाना, मतलब बिरयानी चाहिए, डोसा चाहिए, चाट चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। तो अब आप बिना थके जो है ना ग्रोसरी स्टोरिंग, ग्रोसरी शॉपिंग का जो है इंजॉय इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर जाइए, और देसी मंडी लुइसविल में है, फॉर दोज डू नॉट नो।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: Computer ji ka sawal ye hai. बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
4: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
1: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई।
6: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो,
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
6: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी, लेके आई हूं आपका फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा। और अब हम आ गए हैं अपने गिव अवे राउंड में, तो तैयार हो जाइए। सवाल पूछने वाली हूं मैं और आपको इसका जवाब देने पे मिल सकता है $20 का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग फ्रॉम नियॉन कैक्टस। आई मीन दिस इज अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट फॉर इट्स मेक्सिकन फ्यूजन एंड बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी अवेलेबल भला यहाँ पे दोस्तों। तो किस बात की देर है, तैयार हो जाइए, बस एक सवाल का जवाब ही तो देना है आपने। सवाल है कि एक आदमी बिना अम्ब्रेला या रेनकोट पहने बारिश में चल रहा है, फिर भी उसके बाल गीले नहीं हो रहे हैं, क्यों? और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको कॉल करना है एट 972-235-5555 पे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ, तब तक आप गाने एंजॉय कीजिए।

हम आपके साथ खेल रहे थे अभी गिव अवे राउंड, और क्वेश्चन हमने पूछा था कि एक आदमी है जो कि बिना अम्ब्रेला बिना रेनकोट के बारिश में चलता जा रहा है, लेकिन उसके बाल गीले नहीं हो रहे, क्यों भाई? तो इसका जवाब यह है कि वो बेचारे उसके बाल हैं ही नहीं, वो गंजा है, बॉल्ड है वो तो। हाँ, अब इसके लिए भी कुछ लिसनर्स ने मुझे बताया कि वो चैट जीपीटी वगैरह कर रहे थे, मतलब क्यों कर रहा है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, और सबसे पहले इसका जवाब दिया है हमें सानवी ने। तो सानवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग इन। नियॉन कैक्टस जो है ये काफ़ी फेमस है अपने मैक्सिकन फूड फ्यूजन के लिए, और ये यूज़ करते हैं फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी ज़्यादा इनके पास वेजिटेरियन चॉइसेस और ऑप्शंस भी हैं। इसके अलावा ये जबीहा हलाल ऑप्शंस भी रखते हैं अपने लोगों के लिए जो कि वहाँ पे आके खाना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बोल्ड फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक दैट यू शुड रियली गो एंड एक्सप्लोर दिस। और इसकी वाइब भी काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी यंग, मॉडर्न और एनर्जेटिक है। ये परफेक्ट प्लेस है फॉर हैंग आउट्स। अगर आपको किसी को डेट पे लेके जाना है तो भी आप नियॉन कैक्टस जा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ बस ऐवी जाके चिल करना है, कुछ खाने का लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो दिस कैन बी अ परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। इनके हैप्पी आवर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ मिल सकता है आपको क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और बहुत कुछ, और हर दिन इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल डील तो होती ही होती है। तो फिर इंतजार किस बात का है, जाइए नियॉन कैक्टस और अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ उठाइए, और अच्छे अच्छे गाने का लुत्फ उठाने के लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।

अगर आपको भी किसी के साथ ऐसा ही सतरंगा इश्क हो गया है तो, और अगर आप चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स गुजारे जाएं और ज़्यादा स्पार्क ऐड किया जाए आपके रिलेशनशिप में, तो आप मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जाके लिए उनके लिए कुछ स्पेशल खरीद सकते हैं। जी हाँ, मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड सिचुएटेड है प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को में, और ये डेस्टिनेशन है अगर आपको चाहिए परफेक्ट स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी जो कि एलिगेंट हो, टाइमलेस हो और क्राफ्ट किया गया हो इंडिविजुअली आपके लिए या आपके लव्ड वंस के लिए। फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, यहाँ आपको अपना परफेक्ट पीस मिल सकता है एंगेजमेंट के लिए या एनिवर्सरी के लिए, किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन के लिए, या फिर अगर आप खुद को ऐवी ट्रीट करना चाहते हो ना कि अपने लिए कुछ खरीदना है यार, अपने लिए कुछ करना है, तो भी आप मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जा सकते हो। और यहाँ जो है आपको अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप मिलती है, ब्रिलियंस मिलता है, इनके कलेक्शंस काफ़ी शानदार हैं। और अगर आपको इनके कलेक्शंस एक्सप्लोर करने हो तो इनका मोबाइल ऐप भी है जहाँ आप और ज़्यादा देख सकते हैं डिजाइन और क्या क्या कलेक्शन है इनके, और ज्यादा देख सकते हैं इनके डिजाइन और क्या क्या। म्यूजिक के पास रेडियो 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me, it's called being loyal.
5: It's called being predictable.
6: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: Now, sir, or price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route. Rerouting.
4: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: Kyun?
15: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: Achha. तो सीधा वही ले चलो,
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
17: हाय, आई एम राजकुमार राव एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर एफएम स्टेशन इन द यूएस, 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो।

बुलावा तो आया है जी, लेकिन इश्क का नहीं, फन पिज्जा किचन की तरफ से। जी हाँ, हम आ गए हैं अपने दूसरे गिव अवे राउंड में, जहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और उसका सही जवाब देने पे आपको मिल सकता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। तो तैयार हो जाइए, सवाल काफी इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सवाल है कि नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था हीरा मंडी, काफी पावर पैक्ड शो था, एस्थेटिक्स काफी ग्रैंड थे, तो उसके डायरेक्टर का नाम बताना है आपको मुझे बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555 पे।

थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने भी मुझे कॉल करके इस गिव अवे के क्वेश्चन का जवाब दिया. सवाल ये था कि जो हीरा मंडी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, उसके डायरेक्टर कौन है, और जो जवाब था ना वो मेरे सवाल में ही थोड़ा सा छुपा हुआ था. मैंने आपको बता दिया था कि ग्रैंड एस्थेटिक्स है, और जहाँ भी ग्रैंड एस्थेटिक्स होते हैं तो एक ही डायरेक्टर का नाम आता है जुबान पर, और वो है संजय लीला भंसाली जी. जी यही है सही आंसर इस सवाल का, और इसको जीता है महेश कुमार जी ने. आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. फन पिज्ज़ा किचन लेके आए हैं बहुत सारा फ्लेवर और फायर. जी हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेज पसंद है, तो अचारी पनीर पिज्ज़ा परफेक्ट चॉइस है आपके लिए. और अगर आपको नॉन वेज पसंद है, मीट लवर हैं आप, तो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा जो है ना, इज़ द राइट चॉइस फॉर यू. आई एम टेलिंग यू, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या फिर बैलेंस्ड खाना पसंद है, हर एक स्लाइस फन पिज़्ज़ा किचन का आपका इंतज़ार कर रहा है. हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है ही यहाँ पे खाने के लिए. और अगर आपको इसके मेन्यू के बारे में या किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं funpizzakitchen.com. और मीनवाइल महेश जी, आप तो फ्रिस्को जाके अपने $10 के गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर लीजिए, एंजॉय कीजिए.

मुझे भी आप ही तक पहुंचना होता है मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। और अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग न्यूज। और अगर आप एक स्टोर ओनर है ना, तो ये तो पक्का बस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये न्यूज बनी है। जी हाँ, रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस अपना समर किक ऑफ सेशन लेके वापस आ चुके हैं ऑन 3rd June एंड 4th June फ्रॉम 9 AM to 5 PM। और इस साल ये और भी बड़ा, और भी बेहतर और भी खास होने वाला है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ आपको मिलेंगे क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे जी थ्रू आउट द डे। आपको मिल सकते हैं बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे बेस्ट सेलर्स, और आपको स्टॉक कर लेना है लाइक नेवर बिफोर, लाइक फॉर द इंटायर Year. जी हाँ, रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस सिचुएटेड है 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड में एट बिल्डिंग ए डैलस। तो इंतजार किस बात का है, जून 3rd बस आ ही गया, चले जाना।

मेरा भी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप जो है देख रहे हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में हेल्प करे, तो यू कैन रेफर टू माई टाइम इक्विटी विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई, एंड ये आपको हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग में यकीन रखते हो, उसकी तरफ जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर माई टाइम इक्विटी जो है एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। इस पे और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें mytimeequity.com या फिर उन्हें कॉल कीजिए @469-702-1272 पे। और ये जो आफ्टरनून अड्डा शो था, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विद हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी भी ट्रक या कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल हेल्प यू फाइट योर केस, एंड यू डू नॉट हैव टू पे जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते। और ये आपको इंश्योरेंस कंपनी के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी बचाएंगे थ्रू देयर यू नो प्रोसेसेस एंड पेमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री कंसल्टेशन विद ओमर ख्वाजा टीम, तो यू शुड कॉल देम @469-300-5046 या फिर आप विजिट करें attorneyomar.com। और मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी। मंडे टू थर्सडे होता है जी मेरा शो आफ्टरनून अड्डा 12:30 to 2:30 PM, एंड फॉर गुड म्यूजिक स्टे ट्यून्ड विद फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

आने 3 से 4:30 किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी गेट रेडी टू कॉल मी एंड रिक्वेस्ट योर फेवरेट सॉन्ग्स फनेजिया इसी तरह आपको रखता है एंटरटेन्ड और मैं यानी कि किरण आपको आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में रखती हूँ बे इंतहा एंटरटेन थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग दिस इज मिक्स स्पॉट

चेक आउट करते हैं और उसके बाद आपके लिए पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं. द प्रोसेस इज स्मूथ, स्ट्रेस फ्री, और दिस इज यू नो वेयर ऑल योर नीड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन और टेलर्ड मेड सॉल्यूशंस होते हैं आपके लोन ऑप्शंस के लिए. सो यू हैव एनी क्वेश्चन, ये सुन के आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया या कोई भी मॉर्गेज का सवाल है तो ड्रीम होम मॉर्गेज से कॉन्टैक्ट कीजिए 972-245-5626 इज दैट नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज dreamhomemortgage.com, और यू कैन ड्रॉप देम एन ईमेल, वेरी सिंपल ईमेल आईडी, दैट इज info@dreamhomemortgage.com. ये गाना आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे फ्रॉम द मूवी बेताब, सनी देओल और अमृता सिंह पे पिक्चराइज्ड. आई थिंक सनी देओल की तो डेफिनेटली ये डेब्यू मूवी थी, अमृता सिंह की भी डेब्यू ही मूवी थी, बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म का ये सुपर डुपर हिट गाना. और एक गाना जिसका रीमेक बना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए, दैट इज ऑल्सो ये जवानी है दीवानी, वर्ड है जवानी.

अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं, यू आर लुकिंग टू बाय अ ड्रीम होम फॉर योरसेल्फ, और यू आर लुकिंग टू अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग होम, या फिर आप रीफाइनेंसिंग कराना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू कंसोलिडेट योर डेट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ड्रीम होम मॉर्गेज इज वेयर यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रहे हैं फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम ओनरशिप ड्रीम इनटू अ रियलिटी, और बनाते हैं, आपकी पूरी बात सुनते हैं जी, आपकी रिक्वायरमेंट

All right, mix pot में कुछ हमारी थीम ऐसी होती है कि मैं आपके लिए पुराना गाना प्ले करती हूँ और उस पुराने गाने के जो कोई वर्ड होता है, जो प्रोमिनेंट वर्ड होता है उस गाने में, उससे हम कोई नए जमाने का गाना लेके आते हैं. सो जैसे उसमें था जब हम जवां होंगे, तो इससे मैं ये नए जमाने का गाना, ये जवानी है दीवानी लेके आई. अब जो गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो है जी किशोर कुमार साहब की आवाज में, लेकिन उससे पहले लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे. दिस इज योर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फ्लेवर लाउंज. और जी, ये चांस है आपके पास दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का. और फ्लेवर लाउंज जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड है ऑन प्रेस्टन रोड, दिस इज अ डाइन इन ऑप्शन और वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. सो इफ यू विन यू हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी एट द रेस्टोरेंट. अच्छा, अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले करूंगी बहुत ही खूबसूरत, दिस इज जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, तो किशोर कुमार साहब की आवाज में. लेकिन आप मुझे कॉल करके ये बताइए 972-235-5555 पे कि इस गाने को सुन के कौन सा या नया जमाने का गाना आपको याद आया जो हम इसके बाद मिक्स पॉट में फॉर द न्यू वन प्ले कर सकते हैं. 972-235-5555 है नंबर स्टूडियो का, कॉल कीजिए, मुझे बताइए और जीत लीजिए ये दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी. ये जो गाना अब आप सुनेंगे, इस गाने को सुन के कोई ऐसा वर्ड इसमें से लीजिए और मुझे कोई नया गाना रेकमेंड कीजिए जो मैं मिक्स पॉट में अगला आपकी रेकमेंडेशन पे प्ले करूंगी.

0: थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. ये आपके लिए गिव अवे आया था, दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी, जो कि फ्लेवर लाउंज आपके लिए लेकर आए थे. ये गाना सुन के आपको मुझे एक ऐसा गाना बताना था जो इसी में से कोई वर्ड निकाल के जो आजकल के दौर का हो, ये क्योंकि ये मिक्स पॉट है. एक नया और एक पुराना गाना आपके लिए प्ले करती हूँ. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं जी श्रीराम गुप्ता. श्रीराम कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फ्लेवर लाउंज पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 5 to 6 days टू गो टू Flavor Lounge and avail your dal makhni ya phir dhaba style chicken curry. Dine in only. And to all of you who participated, thank you so much for your calls. And it is always, always a pleasure to talk to you. Funny jaise tarah ki bahut sare giveaways leke aate hain. Mere paas bhi ek aur giveaway maujood hai, but wo thodi der baad. So Shri Ram ne word pick kiya Hindustan aur yahan se aaya pardesh ka ye gana.
1: Hurry Rama, Rama, Rama.

0: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
1: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
2: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
3: क्या?
2: सैलरी बंद हो जाती है.
3: और बिल्स बंद नहीं होते.
2: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
3: मतलब?
2: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
4: The Wealth Tactic. Smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
8: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: Documents ya parcel bhejni hai?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
15: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: Mamu, देखो क्या हो गया?
4: Oh, क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
4: ओए जर्मन का कमाल है।
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
4: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
6: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
13: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
12: K2 ड्राइव मतलब
13: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
12: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
13: 100%
14: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
15: Chicken banana. Chicken banana?
16: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
17: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
18: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville, Dallas का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
19: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
20: कौन सा?
19: कैरेट लेन।
20: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
19: हाँ वही।
20: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
19: देखा, ढूंढ के दिया ना।
10: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
0: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.
22: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

में गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

0: Cisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi smart, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग। और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: Not some or price?
1: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Main hero in hoon.
4: Tumne fir card use kiya?
6: Karna pada. Fees due thi aur already late ho chuke hai payments mein.
4: Par maine abhi check kiya. Hamara credit score aur gir gaya. Kaise manage hoga sab?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। जीनो क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ। जीनो क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स। यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ, फ्री ऑफ चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट with a 3-day right to cancel.
11: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
12: कौन सा?
11: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
12: अरे
11: वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
12: अरे सारे तो सेम है।
11: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
12: ओ हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
13: Ek baar jo maine commitment kar di,
14: to phir sirf Fun Asia hi sununga.
15: Jud jao apni dharti se, desiyon ka sachcha radio channel, Fun Asia. 104.9 FM

104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आधा घंटा और मेरा और आपका एक साथ मौजूद है. एंड बिफोर आई टेक यू टू द नेक्स्ट सॉन्ग, इट इज टाइम टू टेल यू द वेदर अपडेट. फ्राइडे मे द 29th 4:35 PM इन द स्टूडियो एंड वेदर है जी इस वक्त सिटी ऑफ मेकिनी में 88 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 94 राइट नाउ. दिन रहा मोस्टली सनी, हाईज अराउंड 90s. सो इट इज वॉज अ हॉट डे. अभी भी काफी गर्मी है और शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी, लोज इन दी मिड 70s. पोलन काउंट एक बार फिर 6.4 विच इज मीडियम, जबकि यूवी इंडेक्स इज 10 विच इज वेरी वेरी हाई. सो अगर आप बाहर निकलने की प्लान कर रहे हैं नाउ, यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ वॉक और एन इवनिंग एक्टिविटी, मेक श्योर यू हैव योर सनस्क्रीन्स हैंडी एज वेल एज योर कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समर्स में खासतौर पर. सनराइज आज का हुआ 6:19 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:28, which is 8:28 PM. That was your weather forecast right here on Sunehri Kiran.

ऑलराइट जी, और अभी आपको वेदर अपडेट दी थी कल के बारे में भी, वीकेंड चूंकि आ जाता है तो वीकेंड के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि सैटरडे और संडे को क्या मौसम रहने वाला है, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लान्स दैट वी मेक एंड स्पेशली ये तो ईद वीकेंड आ रहा है. तो सबसे पहले आपको बताऊं, सैटरडे विच इज टुमारो मे द 30th, दिन रहेगा मोस्टली सनी विद हाईज इन द लोअर 90s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी विद लोज इन द मिड 70s. और इसी के साथ संडे विच इज मे 31st, दिन रहेगा एक बार फिर सनी, हाईज 95-96 तक जाने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली हॉट वीकेंड, जबकि नाइट्स जो हैं वो मोस्टली क्लियर रहेंगी, लोज इन द मिड 70s एज वेल. सो बी prepared for a hot, hot weekend right ahead of us. This is your weekend forecast right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Ab jab main wapas aaungi, I will give you currency, weather, currency, gold price and traffic. Stay tuned.

गोल्ड प्राइस अपडेट देती चलूं आपको जी. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग राइट नाउ दैट इज 4:40 ऑलमोस्ट 47 पीएम इन द स्टूडियो, गोल्ड प्राइस पर आउंस इस वक्त है $4,539.76, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत है $145.96. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.22 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $37.87 का इजाफा देखने को मिला. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. After this song, I will bring you the traffic update. Right now, agar aap roads pe nikal rahe hain, kaam khatam kar rahe hain, you're already on the road, it is very important to know where you're heading and what are the conditions of the road. Stay tuned.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन

0: I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday. Aapka swagat hai 104.9 FM Fun Nature Radio par. To plan ye hai ki main hu aapke saath aur aap ho mere saath. कैसा लगा आपको ये प्लान? आई एम योर होस्ट आरजे नवनीता और आती हूँ आपको एंटरटेन करने 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. यही तो दिन है जब हम कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. I'm so thankful that it is Friday. जो कुछ भी आपने इस हफ्ते किया हो अभी ऐसा ही सोच रहे होंगे ना, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. क्या कर रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं, खाने पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ कुछ न कुछ मज़े का प्लान है, कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, या फिर यू आर जस्ट पार्टिंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस. जो कुछ भी कर रहे हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे इज व्हाट वी आर टोटली सेइंग फ्रॉम हार्ट. Thank God it's Friday, दोस्तों. जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, बस छोड़ दीजिए. अब कोई पॉइंट नहीं है. ये जो वीकेंड ड्रॉप हो चुका है मेरे शो पे, आई ऑलवेज कम एंड से द वीकेंड हैज ड्रॉप्ड. सो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू द वीकेंड. शुरू हो जाए कुछ अमेजिंग गाने.
2: तू जब तक है तब तक है.

ये तो छोकरों वाला जो गाना है ना, सुपर पीके से लिया गया 104.9 FM फनी शो रेडियो. एक बिग शाउट आउट मैं देना चाहती हूँ किरण को फॉर सच एन अमेजिंग अमेजिंग शो, जैसे कि हमेशा रहता है उनका. जस्ट एवरी सिंगल डे 3 से 5 एंड ऑन फ्राइडेज जस्ट बिफोर माई शो, बिग शाउट आउट टू यू किरण फॉर दिस ऑसम ऑसम टाइम दैट यू स्पेंड विद आवर लिसनर्स. और मैं आ जाती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे, अ वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग ईद. और आई नो ईद हैपेंड, बट हमारा जो ईद के सारे पार्टीज हैं, खाना पीना है, दोस्तों से मिलना है, फैमिली गेट टुगेदर है, जस्ट स्प्रेडिंग द लव, स्प्रेडिंग ईदी और द हग्स इज ड्यूरिंग द वीकेंड. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर हेडेड टू वन और द अदर ईद पार्टी. And I am so, so happy that Eid has such a great vibe around jab aap ke zindagi mein sirf khushiyan hi hoti hai. 104.9 FM Fun Asia Radio sun rahe hain aur main hoon aapki host Navneeta. Ye jo Cocktail 2 ka gana aapne thodi der pehle suna tha, Cocktail 2 will be releasing sometime in June, and that is the 3 people one more time in Cocktail 2.

0: ये वो पुराने गाने इन कम्प्लीटली न्यू फ्लेवर जस्ट फील सो गुड. यू नो ये जो लोग रील्स बनाते हैं ना, बहुत कमाल के रील्स बनाते हैं. और हमारे जो झिलुरा में बहुत ही क्यूट है, कहते हैं नवनीता मेरे रील्स में ना हल्दी चंदन और एलोवेरा के गुण हैं. आई सर अच्छा हाउ कम, सो आप क्या ब्यूटी रील्स बना रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग झिलुरा? इसे नहीं, देखने वाले के चेहरे पर ऑटोमेटिक निखार आ जाता है. You're totally a funny, so funny, Jhelum. How do you do that? I don't know. But Jhelum ऐसे ही हैं. निखार के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं. और हमारे अगर चेहरे पर मुस्कान आ जाना, तो ही हमारे चेहरे पर निखार आ जाता है. Don't you think so? और निखार तब भी आ जाता है जब हमारे finances ना बहुत amazingly set हो. And this part of my show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the US. इसीलिए वो हैं fastest growing because they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They're trusted, efficient and get you ready for the future. फोन उठाइए, नंबर दबाइए, कॉल कीजिए 469-942-9888 और विजिट agfintax.com. एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप विश्वास करेंगे ना, लाइफ में आप जो कर रहे हो और उसकी वजह से आपके चेहरे पर जो निखार हो, दैट इज़ बेटर देन एनी मेडिसिन, एनी एलोवेरा, हल्दी, चंदन, जो भी आप लगाते हो. इफ़ यू आर हैप्पी, दैट हैप्पीनेस गोज़ अ लॉन्ग वे एंड दैट हैप्पीनेस टेक्स यू इनटू अ मूड विच brings you the smile, and that smile people can see, hear and watch on your face. So dosto, jo bhi kar rahe ho na, khushi se kijiye, muskuraiye. The biggest aloe vera, haldi, kumkum, jo abhi Jhelum ne kaha, unke reels se logo ko aisi muskan aati hai ki chehra nikhar jata hai, jaise ki aap koi facial kara ke aaye ho. And I love that Jhelum is saying, I feel Jhelum brings that laughter in your lives that definitely gives that glow to your face. Leti hu ek chota sa break, aap kahin mat jayega.
1: Pritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
2: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
1: Sach? Ya phir court decide karega?
2: Wait, what?
3: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
4: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon unki mehnat ko protect karne mein the right way with estate planning.
3: Agar aapke paas sirf will hai ya kuch bhi nahi hai to ye call delay mat kijiye. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
5: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
6: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
5: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
7: Same order again? Same pizza. Same taste. Same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी.
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, Chandigarh Bites Express in Allen.
1: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites. Straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
12: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
13: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
12: K2 ड्राइव मतलब
13: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
12: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
13: 100%
14: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
16: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
17: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
0: वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो में। किसी ने कहा है, बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा। बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा, ना मैं शामिल हूँ उनके अपनों में, ना वो शामिल है मेरे गैरों में। नायाब है यार, कोई अपना नहीं बना रहा और कोई गैर नहीं बना रहा। आप किधर हैं, रिश्ता क्या है? नायाब, दिल से दिल की बात दिल तक पहुँचे और लगती है ठाएँ, तो आई होप लगी हो ठाएँ। लेकिन एक गाना है जो यस्टर यर्स का है। आशा जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं, शी इज़ गॉन। बट ये इवनिंग जो फ्राइडे इवनिंग होती है, आई एम ऑल अबाउट न्यू सॉन्ग्स, न्यू मूड, न्यू मूवीज़, न्यू रिलीजेज, दैट्स हैपनिंग, न्यू एंड न्यू, क्योंकि फ्राइडे की शाम है। आप सब एब्सोल्युटली एक न्यू फ्रेश लुक में आ जाते हैं और ऐसा फील करते हैं पूरे हफ्ते के बाद एक नया इंसान जन्म लिया है। फ्राइडे की शाम ऐसा ही होना चाहिए। पर ये जो गाना है ना, इस गाने का वाइब ऐसा है कि वो कभी पुराना ही नहीं होता। वो फ्राइडे शाम के लिए तो हम अपने डिस्क में भी बजाते हैं, अपने पार्टीज में भी इस गाने पर हम खूब डांस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं वो पुराने ही नहीं होते, वाइब ऐसा होता है। तो आज सैम जी, आपके रिक्वेस्ट पर ये गाना पुराना जो हुआ ही नहीं।

That is how the full-fledged mood happens. Jawane jaane man, I love it. Dosto, aap jaise bhi ho aur jaisa bhi mood ho, waise hamare Jhiluram, abhi maine kaha ki Friday shaam hai, koi tension leni lene ka, dene ka bhi nahi, kabhi bhi nahi. But Jhiluram mujhe kehte hain, agar aapko koi tension hai na Namita, to hamein bataein. Main boli, achha, aap kya karoge Jhiluram? To unhone kaha, हम आपको उससे भी बड़ा टेंशन देकर पहले वाले टेंशन को कम कर देंगे. What? वैसे सच बताएं, आप अनिशा रेडियो सुन रहे हैं इसलिए आपकी टेंशन ऐसे ही कम हो जाती है, और हम कुछ कुछ आपको बातें बताते हैं जो आपकी टेंशन और कम कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप कभी इन्वॉल्व हो जाए कार या ट्रक एक्सीडेंट में या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, सबसे बड़ा टेंशन. लेकिन अटॉर्नी अम्मार ख्वाजा हैं जो आपका फाइट कर सकते हैं केस एंड कैन हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल. You need an attorney that will make sure you are compensated. तो फिर क्या आप ये मत कीजिए उन्हें जब तक आप जीत न जाएं. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. So हुआ ना टेंशन खत्म. अब ये टेंशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन Jhiluram को आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा. अगर वो आपको बोलते हैं कि वो टेंशन आपको बड़ी वाली देके वो वाली टेंशन जो छोटी वाली है वो आप भूल जाएंगे, no, not a good idea. टेंशन देना है तो उमर ख्वाजा को दीजिए. Jhiluram, no, डोंट इवन ट्राई कॉलिंग हिम. डन. बट वाओ वाला गाना आपने सुना है? वाओ, नाम ही वाओ है.

वाओ, वंडरफुल पर 9 FM फनीचर रेडियो, ये वाओ गाना ना है जवानी तो इश्क होना है, वही वाला है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन है, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े। इस फिल्म में डेविड धवन की एक बार और फिल्म आ रही है। तनिष्क बागची का म्यूजिक विद ऑल दिस हाजी द पंजाबी मिक्स दैट हैपेंड एंड आप सुन रहे थे वाओ ऑन फन एशिया रेडियो। वाओ की तो बात है ही है, क्योंकि वाओ जब हम कहते हैं दैट थ्री वर्ड्स डब्ल्यू है डब्ल्यू के बीच में ओ विच गिव्स अस दैट फीलिंग ऑफ वाओ फॉर अ फ्राइडे नाइट एंड अगेन आई ऑलवेज फील दैट ओ माई गॉड वाओ थैंक गॉड।

सुपर एंड आई होप यू आर हैविंग अ लवली टाइम. ऐसा कोई गाना हो ना जो मैं आपको बोलूं चलिए लेट मी प्ले दैट फॉर यू. फोन उठाई, नंबर दबाइए 9722355555 स्टूडियो का नंबर. बनने का मन हो रहा है मुझे जीनी. जो कमा का क्या सुनेंगे आप.

0: सुपर से ऊपर वाइब था. माय गॉड, आई वाज डांसिंग एंड आई एम पैंटिंग. पैंटिंग मतलब हाफ रही हूँ. एंड क्या गाना था ना वो गाना, फिर से ये जो नए रीमिक्स में आ चुका है, चुनर चुनर तारा रा रा रा रा रा रा रा रा रा, वही मूवी है जवानी तो इश्क होना है. और वही गाने जो लौट के आते हैं और हमें दीवाना बना देते हैं, उसमें से ये वाला गाना अभी आया हुआ है. आपको रिपीट में सुनना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बीइंग एन आरजे मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो हम ख्याल रखेंगे आप सबका. तो आप फ़ोन उठा रहे हैं, नंबर दबा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बनी हुई हूँ मैं आपकी यहीं पर जीनी. जो हुकुमा का क्या सुनेंगे आप?
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सब

0: सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
9: Welcome, welcome, welcome, or welcome because

Thank God it's Friday. सुन रहे आप 104.9 FM Fun Asia Radio. थक के निकली हैं ज्योति जी अपने ऑफिस से, अब घर जाने का जाने के लिए ड्राइव कर रही हैं. जाने का इरादा नहीं है, ऑलरेडी इरादा बना लिया है, ऑलरेडी ऑन हर वे है. एंड शी इज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग जो उनको मुस्कान प्रदान कर सकता है. तो मैं तो कह चुकी हूँ आपको कि आई एम योर जीनी राइट नाउ. जो हुकुम आका क्या सुनेंगे आप, फोन उठाइए, नंबर दबाइए. ज्योति कॉल्ड मी एंड शी वांट्स दिस सॉन्ग टू ब्रिंग दैट मुस्कान इन हर लाइफ राइट नाउ बिकॉज शी वांट्स टू लिसन टू दिस. ऐसा इतना इतने गाने होते हैं जो आपके ना रिपीट लिस्ट में दिमाग में होता है कि जब भी आपको वो गाना रिपीट लिस्ट में दिमाग में होता है कि जब भी आपको वो गाना कहीं से भी सुन जाए दैट ब्रिंग्स दैट स्माइल ऑन योर फेस. ऐसा कोई गाना गाना है ऐसा कुछ गाना है तो फोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-235-5555. स्टूडियो का नंबर है, विच ऑलवेज ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस.

इज़ माय गॉड, ये ब्लू आईज का तो जो प्यार है ना, कि आपके बच्चे का आईज ब्लू हो जाए ना, ऐसे आप फूले नहीं समाते हैं. आई मीन एनी थिंग विच इज़ डिफरेंट, यू नो, वी हैव यूजली ब्लैक और ब्राउन आईज, बट इफ समबडी हैज़ वेरी लाइट आई, ग्रे आई, ब्लू आईज, और बस वही है, आँखों में सबसे पहले नज़र जाती हैं. आँखों में जब आप आँखें डाल के किसी को देखें और उसका ब्लू आई हो या ग्रे आई हो या लाइट ब्राउन आई हो, ऐसे ही प्यार हो जाता है. क्या करे, दिस इज़ नॉट फेयर, मेरे ब्राउन आई ने क्या किया है जो मुझसे इमीडिएटली प्यार नहीं होता. पर ऐसा ही है, यू योर आईज आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस. आप अगर किसी को देखते हैं, सबसे पहले आँखों में आँखें डाल के देखते हैं, उसके बाद ही यू वुड थिंक ऑफ यू नो सेइंग समथिंग, टॉकिंग, यू नो, जब तक वो इंसान ने आपको देखा नहीं है और आपके उनकी आँख नहीं मिली है, तब तक वो कम्युनिकेशन ही नहीं होता है. ही इज़ नोटिस्ड यू एंड यू आर सपोज टू रिप्लाई टू दैट पर्सन, राइट? अगर मैं दूसरी जगह देख के आपको बात कर रही हूँ, हेलो क्या कर रहे हो आप, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने आपसे बात की है. सो आंखों से आंखें मिलना ज़रूरी है, नहीं तो बात होती है हवा में.

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं. ये है फ्राइडे की शाम. फ्राइडे डोंट टेक टेंशन, सिर्फ मुस्कुराना है आपकी जिंदगी में. मुस्कान चाहिए तो कंप्लेन छोड़ना होगा. नहीं आप कंप्लेन छोड़ सकते तो फिर आप क्या होगा ना, दूसरे के टेंशन को अपनी जिंदगी में ले लेंगे. व्हाट्स द पॉइंट मैन. आपके हाथ में आपका फोन है, आपको अगर अपना म्यूजिक चाहिए आप अपना म्यूजिक बजा दीजिए. आपको फन एशिया का म्यूजिक चाहिए, गेट ऑन टू आवर ऐप, गेट ऑन टू आवर रेडियो, लिसन टू व्हाट यू वांट टू, बिकॉज नोबडी एल्स शुड हैव द की टू स्पॉइल योर मूड. मानते हो कि नहीं आप? आपकी जिंदगी की मुस्कान आपके हाथ में है. सो गाइज एंजॉय योर फ्राइडे नाइट एंड जस्ट से थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.

ये सुन रहे हैं 104.9 FM फर्नीचर रेडियो मेरे साथ. और पता है मैं कनेक्ट कर रही हूँ विथ कनेक्टिंग अमेरिका. यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. कैसे होता है? इट डजंट स्टॉप देयर. दे हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years और लेस. वाओ वाओ ना, इट इज वाओ. Don't wait. Call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expense into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. Ji haan. Ek bahut hi pyari si yesteryears nahi kahungi. Kya yaar, how can I call Shah Rukh yester songs? But this beautiful song from his film जिसमें दीपिका पादुकोण ने डेब्यू किया था. एंड दिस अमेजिंग सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट हैज कम ओम शांति ओम आपके लिए इस शाम को एक

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
18: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
19: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
20: Kya matlab?
21: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
21: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
0: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
22: क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है, आप घर पे रहते हैं तब बोलते हैं आई नीड टू गो आउट, और जब बाहर निकल जाते हैं तो कहते हैं सी आई न्यू आई शुड हैव स्टेड होम. ये कश्मकश आपके ज़िंदगी में है? फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और अभी ये जो गाना है, इस गाने की रिक्वेस्ट आई है एंड दिस इज़ जस्ट फॉर यू.

0: चलिए हो जाए एक कुछ बातें, और यहाँ पर इन बातों के साथ आपको चांस मिल सकता है कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन मिलने का चंडीगढ़ बाइट से, जो एलन में है। प्लस आप इंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली। ये लोकेटेड है मैकडॉनल्ड ड्राइव इन एलन में। सो अगर सोचिए आपको बताना हो व्हाट्स वन थिंग यू बिलीव्ड एज अ चाइल्ड दैट मेक्स यू लाफ इवन टुडे। बचपन में आपने कभी कुछ ऐसी बात सोची होगी और अब आप उसको सोचते हैं तो आप सोचते हैं ओ माय गॉड, हंसी आ जाती है आपकी सोच पर, फिर लगता है यार बच्चा ही तो था, वाओ सो इनोसेंट, क्या सोच थी। फोन उठाइए, नंबर दबाइए 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। व्हाट्स वन थिंग यू बिलीव्ड एज अ चाइल्ड दैट मेक्स यू लाफ टुडे। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अरे मेरे पास तो कॉल ही आ गया। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय, तो बचपन की एक बात जो मुझे याद आती है वो है कि जब भी वो अवार्ड शोज आते थे तो जब कोई रिएक्शन कैप्चर करके बताते थे टीवी पे तो बचपन में लगता था कि वो लाइव रिएक्शन है या तो फिर सच्ची में हो रहा है। वी नेवर न्यू कि अभी कुछ पता ही नहीं था।
0: सो क्यूट, अब आपको पता है कि वो एक बार बस रिएक्शन कैप्चर कर लिया, बार बार उसी को दिखा रहे हैं, हम कितने स्मार्ट हो गए हैं। क्या है आपका नाम?
1: रौनक।
0: रौनक, हाँ रौनक, बट दिस सो फनी ना, एक ही रिएक्शन बार बार दिखाते रहते हैं
1: और वो सीन भी एकदम एंडिंग में आ जाता अगर एक्चुअल में देखा तो। अपकमिंग में बताएंगे लेकिन वो एंडिंग में आएगा जब 12 बजे शो खत्म होना है, लेकिन वो रिएक्शन देखने के लिए
0: रेडियो फोन उठाइए, नंबर दबाइए 9722355555 का नंबर। यस, आपका नाम क्या है?
2: हाय, दिस इज चारू।
0: चारू, हाय, हाउ आर यू? टेल मी व्हाट वाज समथिंग व्हिच स्टिल मेक्स यू
2: लाफ। हां जी, तो बचपन में जो न्यूज आती थी तो आई यूज टू थिंक कि ये जो न्यूज रीडर है कैसे याद कर लेती है सारी न्यूज।
0: सो क्यूट, हां वेरी क्यूट,
2: इसको कैसे इतना सब कुछ याद रहता है बोलने के लिए।
0: सीरियसली कितने कितने इनोसेंट थी आप, माय गॉड।
2: सो या व्हेन आई थिंक ऑफ इट सो फनी नो,
0: सो फनी नो, रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। 104.9 FM Financial Radio सुन रहे हैं। Good evening Financial Radio, you are live on air.
3: Hi, my name is Sumit.
0: Sumit, tell me, hi.
3: Hi. तो बचपन की याद एक अच्छी है कि जब भी हम टीवी देखते थे तो टीवी देख के ऐसा लगता था जो भी खाने की चीजें आ रही हैं वो लिटरली टीवी के अंदर ही हैं, एंड सम टाइम व्हाट वी यूजुअली डू इज हम पीछे टीवी के जाके देखते थे और बोलते थे अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सम टाइम ऐसा फील होता था कि खाना सच में कहाँ चला गया, पीछे ही तो था, अभी टीवी के अंदर ही तो था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग विद माय ब्रदर एंड सेइंग भैया ये खाना आ रहा है, लेट्स ब्रेक दिस टीवी, फटाक से निकाल लेते हैं अपन।
0: ओह माय गॉड, सो क्यूट, आपने तोड़ा नहीं, शुक्र है। बट सच बताऊं,
3: नहीं तोड़ा।
0: सेम पिंच, मैं भी वो पीछे घुस के छेदा में देखती थी रेडियो के कि क्या सब सच्ची में डांस कर रहे हैं। बट आपने खाना, थैंक गॉड आपने खाना बोला नहीं कि आज बहुत अच्छा खाना आ रहा है टीवी पे, कोई मत बनाओ। थैंक यू सुमित, टीवी से खा लेते। वाओ, गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
4: हेलो,
0: क्या है नाम आपका?
4: हाय, मेरा नाम मुकेश।
0: मुकेश, आप क्या स्पीकर फोन या ब्लूटूथ पे है? बहुत नॉइज है, बहुत फीडबैक आ रहा है। टेल मी, बताइए आप अपनी याद।
4: मैं जब छोटा था तो अभी भी हंसी आती है मुझे, ये ऐसा लगता था जैसे जब कोई रेडियो पे बोल रहा होता है तो मतलब कोई अंदर बैठ के बोल रहा होता है, ऐसा फील होता था मुझे। मैंने रेडियो को फोड़कर भी देखा है, वहाँ जो छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर टाइप कुछ लगे नहीं होते, ये सीट होगी, इनमें बैठे होंगे लोग बोलते हैं, ऐसा करके भी सोचता था,
0: है ना, कोई निकला ही नहीं। ओह माय गॉड, सीरियसली कितना धोखा। सो क्यूट, हम कितने इनोसेंट ही अच्छे थे।
4: ऊपर से रेडियो फूट गया, पापा की डांट अलग
0: से। सो क्यूट पापा, क्या जाने आपके दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है। आई मीन यू आर सो स्ट्रांग, बड़े हो के ये कुछ ना कुछ बनेगा ये बच्चा। बट थैंक यू सो मच। Good evening, Fresh Radio. You are live on air.
5: Hi, my name is Neha. And
0: please switch off the radio.
5: Yes. Yes, I did. Yeah, so I was thinking when I was kid, like जब टीवी में शोज आते थे, right? अभी मैंने सुना किसी का, वो भी मेरे से लाइक सेम थॉट्स है। मैं भी ऐसा सोच रही थी कि वो लोग अंदर जाते कैसे होंगे, लाइक
0: बहुत दरवाजा इतना बहुत छोटा
5: इन द टीवी। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक व्हेन आई वाज लाइक इन सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड, गांव में हम रहते थे, तो लाइक हमने सुना कि एक मेरे फ्रेंड ने किसी को किस किया, देन वी वर सेइंग लाइक ओ माय गॉड नाउ ही इज बिकम प्रेग्नेंट।
0: ओ किस से, सो क्यूट। थैंक यू नेहल, आपकी सोच बहुत स्मार्ट थी, बट थैंक यू। गुड इवनिंग फाइशो रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
6: यस दिस इज पूजा स्पीकिंग।
0: पूजा स्पीकिंग, थैंक यू सो मच। हाय, थैंक यू, टेल मी।
6: थैंक यू फॉर प्लेइंग द तुम कुछ।
0: Sure. Thank you, Pooja, for that request.
6: मुझे बचपन की एक याद है कि जब घर में आते थे कोई गेस्ट, तो मम्मी पापा बोलते थे कि कुछ परफॉर्म करके बताओ। हम छोटे छोटे तीन रहने थे हम लोग, तो हम सारा इतना खड़े हो जाते थे।
0: तुरंत ही खड़े हो जाते थे।
6: तुरंत खड़े हो जाते थे, और वो स्कूल में जो सिखाते है ना, करती गुलदस्ते में खिली रहती है, वो वाला सॉन्ग है ना, मेरे बच्चे से याद है। हम तीनों बहने अभी आती है तो
0: हमारे क्या परफॉर्मेंस, क्या अच्छी याद है। ओ माय गॉड, सो क्यूट। वेयर आर योर टू अदर सिस्टर्स?
6: दे आर इन इंडिया।
0: ओके, सो क्यूट। अभी भी आप लोग जब भी मिलते होंगे उसे याद करते होंगे, राइट?
6: हाँ, बहुत हंसते हैं हम लोग, फोन पे भी बात करते हैं तो हंसते हैं।
0: नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू,
6: थैंक यू।
0: That was so so so cute. चलो डांस करके दिखाओ। तीनों की तीनों बहनें खड़ी हो जाती थी बोले गाने पर डांस करने के लिए। सुपर कूल। गुड इवनिंग फाइश रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। यस सॉरी, गुड इवनिंग, टेल मी, यू आर लाइव ऑन एयर। आई नो देयर आर टू मेनी कॉल्स राइट नाउ, बट टेल मी, हेलो, गुड इवनिंग फाइशर रेडियो, आप ऑन एयर है, बताइए मुझे आपका नाम।
7: हेलो,
0: क्या
7: वो जो डांस वाला, वो जो आंटी बोल रही थी, उसमें दो एडिशन और थे। जब भी कोई आता था तो जब वो चले जाते थे, तो जो भी प्लेट बचता था वो खाने के लिए सबसे पहले टूट पड़ते थे। और साथ में फिर कोई रिश्तेदार जा रहा होता था, तो जब जल्दी से जाते थे कि पैसे मिलेंगे,
0: है ना, पैर छूने के लिए, पैर छूने से
7: पैर छूने से पैसे मिलेंगे।
0: हाँ, नाम क्या है आपका?
7: आकाश।
0: हाँ,
7: आकाश।
0: आकाश, तो आप क्या देते हैं पैसा कोई बच्चे आपके पैर छूते हैं तो?
7: हाँ, मैं तो देता हूँ।
0: बट आजकल बच्चे छूते नहीं है ना, उनको पता है पैसे मिलते हैं,
7: पैसे तो मिलते
0: हैं। हाँ, नाइस, कीप ऑन द ट्रेडिशन, लेट इट गो, है ना, गो ऑन। थैंक यू सो मच। यार सीरियसली, माय ब्रदर इन लॉ, उनके बच्चे जब इंडिया जाते थे तो उनको पता चल गया था कि यहाँ पर तो पैर छुओ और पैसे मिलते हैं। ओ माय गॉड, तो सबके सब he used to make money and come back to America, and he used to say, oh my god, I made money and came back. मतलब बहुत इजी है, इंडिया में जाओ और पैर छुओ और पैसे मिल जाते हैं, सुपर। यू नो किड्स नो हाउ टू डू इट। गुड इवनिंग फाइव शोर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
8: हाय, गुड इवनिंग।
0: हाय,
8: सबसे पहले तो आप कितने पॉपुलर हो, कितनी देर से वेट कर रहे हैं, कितने लोग आपसे बात करना चाहते हैं।
0: ओ माय गॉड, यू आर सो स्वीट, हाउ लवली। अपना तो नाम बता दीजिए। थैंक यू
8: शिल्पी, मेरा नाम शिल्पी है।
0: मेरा नाम शिल्पी, ऑलराइट। हाय शिल्पी, यू आर सो स्वीट। ठीक है, मैं तो खुश हो गई, बट आप बताइए आप किससे मुस्कुराती हैं?
8: ओके, बचपन की यादों की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ही बताने या हाँ, तीन चार बताने?
0: एक, एक, एक, एक, एक, एक हम ब्रेक में घुस जाएंगे, आप कट ऑफ हो जाओगे, हाँ, बताइए।
8: ओके ओके, तो बचपन में ऐसा लगता था ये जो हीरो हीरोइन है सच में इनकी शादी हो गई है, हाँ, ये सच में गाना गा रहे हैं, हाँ,
0: और सच में मर गए हैं। मैं तो सोची थी, हाँ,
8: और जो श्रीदेवी है सच में नागिन है।
0: ओ माय गॉड, राइट शिल्पी, राइट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आप कहीं।
9: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता।
10: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग।
9: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है।
10: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल।
9: कैसे?
10: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे।
9: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी।
10: या कैरेटली इन काइंड,
11: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry, made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
10: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
13: Wo thoda overheating tha.
10: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
16: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
15: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
17: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई, और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
18: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
19: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
20: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
21: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
22: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
18: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
22: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
23: I've been researching retirement planning.
24: Oh, really? Where?
23: Google, YouTube, a guy on TikTok.
24: Or you could just talk to Wealth Active.
23: What's the difference?
24: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
18: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता।
10: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग।
9: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है।
10: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल।
9: कैसे?
10: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे।
9: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी।
10: या कैरेट लेन काइंड।
11: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry, made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
17: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back, June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse
1: house into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: Nostalgia, इसे कहते हैं, बचपन की यादों में पहुंच गए. So many of you want to have so many amazing stories. और बचपन में आप उसको believe करते थे और believe करके आगे बढ़ गए हैं और वो बचपन अभी तक नहीं भूला, right? Because those are the memories that made you in your roots. And अभी अपने बच्चों को देखते हैं ना, उनके innocence को वैसा ही है. बट बचपन की यादें कहाँ भुलाई जा सकती हैं. कौन है विनर मैं बताऊंगी इस गाने के बाद.

0: बचपन का प्यार भी ऐसा है, योर फर्स्ट लव या बचपन का प्यार बिल्कुल नहीं भूलते. दोस्त भी यार भी जब मिल लेते हैं ना तो ख्याल वहीं पर चला जाता है, डिस्कशंस वहीं चालू हो जाते हैं. टेकिंग माय नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. आपका नाम बताइए.
1: मेरा नाम संतोष कुलकर्णी है.
0: संतोष,
1: और मेरे बचपन से मैं बहुत स्मार्ट था.
0: अच्छा.
1: तो मैंने बचपन में इस बात पे प्रोटेस्ट किया था कि स्कूल में सिर्फ टीचर को पैसे मिलते हैं, बच्चों को पैसे नहीं मिलते. और जबकि स्कूल बच्चों की तरह से चलता है.
0: वाह, क्या बात है.
1: आई डिस
0: हेलो
1: वेरी बायस एंड स्कूल इज नॉट पेइंग टू द स्टूडेंट्स. तो मेरे डैडी ने मेरी मुलाकात किसी और टीचर से करवाई. और वो बोले कि तुम स्कूल आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. एंड देन ही थॉट आई विल नॉट गो टू हिज क्लासरूम एंड आस्क फॉर द मनी.
0: बट यू डिड.
1: तो मैंने गया था. आई वेंट टू हिज क्लास. आई सेड नमस्ते, यू प्रोमिस मी टू गिव मनी, वेर इज माई मनी. तो मैंने ये दो तीन बार किया था. टीचर को पैसे देने पड़े थे. लेकिन मेरे बड़े भाई उस क्लासरूम में थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने मुझे मारा था. लेकिन फिर भी आज भी मुझे लगता है कि बच्चों को भी स्कूल में पैसे मिलने चाहिए.
0: अच्छा.
1: स्कूल बच्चों की तरह से चलता है.
0: तो फिर आप कुछ भी खोल के बैठे, कोई कुछ करने के लिए उन्हीं की वजह से चलता है. आप मेरे सारे लिसनर्स हैं जिनकी वजह से हमारा फर्नीचर रेडियो भी चलता है.
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. But I am very thankful to that teacher. He is still alive. He is 85 plus. And he opened the door for the school for me. And then eventually I did lot of amazing things. I topped IIT also. Really? And I am into a good job.
0: Yeah.
1: But अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पैसे सबको मिलने चाहिए.
0: सही है. और उस वही आपको स्माइल भी दे देता है. बचपन में हम कितने इनोसेंट थे, मुझे लगता था कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी वजह से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तो मुझे भी पैसे दो. सो क्यूट बट गुड. एटलीस्ट
1: वो मुझे अभी भी पैसे मांगते कि मैंने तुमको पैसे दिए थे. मैं बोला मैं सब कुछ भूल चुका हूँ.
0: अच्छा, कन्वीनियंस. हाँ, अब तो आप आईआईटी से टॉप होकर इतने बड़े जॉब के बाद आप क्यों पैसे लौटाएंगे, मुकर गए हैं आप.
1: राइट, राइट.
0: थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट.
1: हमेशा रहेगा मेरे ऊपर. थैंक यू सो मच.
0: हाँ, वो कर्जा.
1: इंटरेस्टिंग,
0: वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया संतोष जी. देखिए, ऐसा ही होता है, हम बचपन में कुछ भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और उसको पाने के लिए जा सकते हैं, बिकॉज वी थिंक इट इज़ द राइट थिंग. एंड दैट्स हाउ किड्स आर. एंड वन ऑफ माई लिसनर्स ऑल्सो सेड ऑफ एयर दैट वो ना नया नया वर्ड सीखी थी, खुदकुशी. एंड उन्होंने ना फूंक मार मार के चींटियों को गिराया था और वो कहती थी माई गॉड, इसने तो खुदकुशी कर ली. माई गॉड. सो या बचपन की यादें. सो गुड.

0: पति पत्नी और वो दो से लिया गया ये वाला गाना. टेक माय लास्ट कॉलर ऑन एयर. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, माय नेम इज स्वप्निल.
0: हाय स्वप्निल, आपकी बचपन की याद बताइए.
1: तो मेरी मौसी की नई नई शादी हुई थी. हाँ. और उन्होंने उन्हें उनकी मामी सास ने लंच पे बुलाया था.
0: अच्छा.
1: तो उन्होंने मुझे समझा के भेजा क्योंकि वो बहुत अनसर्टेन थी कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे मैं कितनी देर रुकूंगी. तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया कि है ना आधे घंटे बाद ही तो बोलना स्टार्ट कर देना कि चलो मौसी चलो मौसी चलो मौसी. तो मैंने कहा ठीक है. अब हम आ गए, अब मैंने थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दिया बोलना मौसी चलो चलो मौसी चलो. अब वहाँ पे उनका मन लग गया. सबके सामने चिल्ला के बोली क्या क्या प्रॉब्लम है, तब से मेरे पीछे पड़ी गई, चलो मौसी चलो मौसी. तो सब वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला अरे आपने ही तो कहा था कि मुझे ऐसे बोल देना. सबके सामने इंसल्ट हो गई.
0: दिस इज सो क्यूट, ये आप कभी नहीं भूलेंगी. और ये कितना इनोसेंट है, राइट? ओ माय गॉड, आई लव इट. व्हाट्स योर नेम? स्वप्निल, राइट? सो क्यूट. आज भी ये किस्सा आपके घर में हमेशा होता होगा, राइट?
1: राइट, बिल्कुल.
0: थैंक यू, थैंक यू. मजा आ गया गाइज. सो यू नो वॉट, आई एम गोइंग टू पुट अ चिट. आप लोग के सबके इतने कमाल कमाल के यू नो बचपन की याद है जिसपे आप क्या हंसे, मैं भी हंसी, हम सब हंसे जो डैलस में आपको सुन रहे हैं ऑन फनीशा रेडियो, कि हम बचपन में सच्ची बहुत इनोसेंट थे, कुछ कुछ काम कर लेते थे, लेकिन वो यादें अभी तक हमारी जिंदगी में, अभी तक वो याद है कि यार आई डिड सच अ फनी थिंग एंड वी ऑल डू इट एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द इनोसेंस.

0: This one from the bads of Bollywood. Sun rahe 104.9 FM, Fun Asia Radio. Akash, you are the winner. Thank you so much. Aapko milta hai kadhai paneer ya kadhai chicken.
1: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: चिकन बनाना
5: ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
7: Is sheher ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
9: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
10: सच में बिल्कुल घर जैसा.
6: Try the variety of veg and non-veg specialty kulchas with gravy, butter chicken and many more. Located in Irving, there is Punjabi ghar ka khana on every plate. Chandigarh wale, taste that feels like home.
11: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind.

सुपर 104.9 एफएम फर्नीचर रेडियो पर आपका स्वागत है. जो हम वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज योर बचपन की मेमोरीज दैट स्टिल ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस. वी डिड अ रैंडम सिलेक्शन. आकाश आप फोन उठाई, नंबर दबाई 9722355555. दीजिए मुझे डिटेल्स और आप जीते हैं कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. आप इंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. और आपने कहा था कि जब डांस करते थे लोग टीवी के अंदर या फिर खाने आते थे तो आपको लगता था कि वो आपको ही मिलने वाला है. सो दैट इज़ रियली तौबा तौबा.

ऐसा ही होता है ना कभी कभी, people will just say आप तौबा लग रहे हो, और जब तौबा लगते हो तो कभी कभी जो आप ज्वेलरी पहने हो उसकी वजह से भी, मलाबार जो डैलस प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, यू कैन शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम देम, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड्स रिंग्स इयर रिंग्स नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. लोग जरूर कहेंगे तौबा तौबा, क्या तौबा दिख रही है. फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, द डायमंड कलेक्शन ब्लेंड्स सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन, परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज और जस्ट सेलिब्रेटिंग लव. आप डाउनलोड कर दीजिए उनका मोबाइल ऐप आज ही, डिटेल्स आपको वहीं पर मिलते रहेंगे. सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
4: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग, या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड।